एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईवासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 12, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के अक्टूबर महीने की 4 तारीख।

ये आकाशवाणी चाईवासा है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए

0: 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartuhari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from the Upper House. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of the Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Ruti has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by Congress MP Shaptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. Niti Aayog member Rajiv Gauba has emphasized the need for regulatory frameworks to evolve alongside a rapidly changing geopolitical, technological and economic environment. He emphasized that the challenge before policymakers is not to choose between regulation and growth, but to develop regulations that manage risk while supporting innovation, competition, and investment. Mr. Gauba stated this while addressing the plenary session on regulatory oversight in an age of disruption at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday. Emphasizing the need for a proportionate approach, Mr. Gauba said regulatory requirements should be calibrated to the nature and consequences of the risk involved. The Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. The External Affairs Ministry said that the Pakistani side was informed that three individuals infiltrated into the Indian territory. And despite multiple warnings by the BSF to return to Pakistan, they continued to move towards the border fence. The BSF was compelled to engage them for posing an imminent security threat. India said this incident highlights a clear pattern of repeated cross-border movement by armed narcotic syndicates operating from Pakistan. Pakistan was urged to investigate these cross-border infiltrations, drug smuggling activities, and the complicity of Pakistan border guarding forces, and to take appropriate remedial measures. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephonic conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. The IG Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. India has put up an impressive performance at this year's Games, securing the fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India's women's flag bearer for the closing ceremony has been confirmed as shooting star Neeru Dhanda, who will proudly carry the tricolour in Nagoya. The ceremony will feature traditional closing proceedings, including the parade of athletes and the formal conclusion of the games. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी चाईवासा है. आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान. इस दैनिक कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं रंजना जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर.

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम समर्पण, जिसमें आज हम लेकर आए हैं फिल्मी भजन।

कार्यक्रम विवरण पौने 7 बजे सुनिएगा सुगम संगीत, 7 बजे जोहार चाईबासा, 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की महक, जिसमें आज सुनिएगा हो लोकगीत।

अभिविधा। ये कार्यक्रम होगा पूर्वाह्न 9 बजे। फिल्म संगीत पर आधारित रसरंजन 9:30 बजे। फिल्म संगीत 10 बजे। पूर्वाह्न 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के बाद आज फौजी भाइयों के लिए जय भारती कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6 बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, 6 बजे मुख्य समाचार, 6:02 पर हो अखड़ा, 6:30 बजे विकास योजना पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग का प्रसारण होगा, 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे और उसके बाद जिले में आजकल।

7:15 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम होगा, 8 बजे रजनीगंधा। फरमाइशी नगमों के इन कार्यक्रमों के बाद समाचार संध्या 8:45 पर, 9 बजे न्यूज़ 8:09, 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, 10 बजे एशियन गेम्स 2026 के 20वें

संस्करण पर डेली कैप्सूल हाइलाइट्स 10:20 पर गजलों का कार्यक्रम महफिल 10:30 सुरों के रंग 11:00 हिंदी समाचार 11:05 पर इंग्लिश न्यूज और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था आज का कार्यक्रम अभिवर्णन।

7:45 बजने वाले हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। इस दैनिक कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं के ज्योति।

सुबह के 7 बज रहे हैं और पेश खिदमत है आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सबसे पहले ये गाना फिल्म मधुमती से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना दे साहब की।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़, और यह है एक गैर फिल्मी नगमा।

0: का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस संदेश के साथ ही समाप्त होता है आज का जोहार चाईवासा कार्यक्रम। यह आकाशवाणी चाईवासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा।
0: इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
4: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन दी गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centers of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smit Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. Trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. And now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Olaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
8: The centers of excellence will be established at Tezpur University in Assam, Vishwa Bharati University in West Bengal, Deccan College Postgraduate and Research Institute in Pune, Central University of Odisha and Central University of Gujarat. The initiative will provide dedicated institutional support for advanced academic research, preservation and digitization of linguistic and literary heritage and wider dissemination of knowledge relating to these classical languages. The establishment of these 5 centers marks a significant step towards strengthening the institutional ecosystem for the study, research and preservation of India's classical languages. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
7: The 19th Pravasi Bharatiya Divas Convention will be held from the 7th to the 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. We have a report.
9: The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. The convention will also have a youth PBD segment. The event will bring together Indian diaspora members, young diaspora leaders, entrepreneurs, professionals, academics, innovators and other stakeholders from across the world. External Affairs Ministry said that the Pravasi Bharatiya Divas is celebrated to pay tribute to Mahatma Gandhi, who returned to India from South Africa on 9 January 1915. The 19th edition of the flagship diaspora engagement event will build on the success of previous editions to foster the deep connections of the Indian diaspora with India, celebrating their contributions to India and the world. Shundi Pandash Gupta, Akashbani News, Kolkata.
7: Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITI's PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on the 4th of October last year. We have more from our correspondent.
10: The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. It aims to enhance the overall quality and relevance of vocational training by transforming Government of India's industrial training institutes, ITIs, into modern industry-aligned training institutions. The scheme has a total outlay of over 60,000 crore rupees, promising 30,000 crore rupees from the center, 20,000 crore rupees from states, and 10,000 crore rupees from industry. ITIs provide vocational training to equip youth with practical skills for employment and industry. Under the Craftsman Training Scheme, training is offered through government and private industrial training institutes in engineering and non-engineering trades. Its course duration varies from 6 months to 2 years, depending on the trade. Harshita Ojha, Akashwani News, Delhi.
7: Niti Aayog member Rajiv Gauba has emphasized the need for regulatory frameworks to evolve alongside a rapidly changing geopolitical, technological and economic environment. He emphasized that the challenge before policymakers is not to choose between regulation and growth, but to develop regulations that manage risks while supporting innovation, competition and investment. Mr. Gauba stated this while addressing the plenary session on regulatory oversight in an age of disruption at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday. Emphasizing the need for a proportionate approach, Mr. Gauba said regulatory requirements should be calibrated to the nature and consequences of the risks involved. This is Akashwani giving you the news.
1: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
7: Welcome back to the morning news. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Today in our special series, we bring you a closer look at how the government has improved civil aviation infrastructure with world-class amenities at our airports. We have a report.
4: The Kempegowda International Airport in Bengaluru has today transformed into a major passenger and cargo hub connecting Tech City Bengaluru with destinations across India and the world. During 2025-26, it handled over 4 crore passengers, with international passenger traffic alone increasing by nearly 24%. The airport also recorded about 2.8 lakh aircraft movements during the previous financial year. It handled over 5 lakh metric tons of cargo last year, connecting businesses to major markets in India and abroad, with major check-ins and baggage facilities, flight information displays, lounges, plush interiors. It has been admired by many in the social media. The terminal in a garden concept of T2, with green walls, hanging gardens, landscaped spaces and use of engineered bamboos filtering natural light, reminds you that Bengaluru is also called the Garden City. The airport combines passenger amenities, modern infrastructure, distinctive architecture and stringent security while reflecting the character of the city it serves. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
7: Ministry of External Affairs has summoned the Chargé d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday.
1: The External Affairs Ministry said that the Pakistani side was informed that three individuals infiltrated into Indian territory and, despite multiple warnings by BSF to return to Pakistan, continued to move towards the border fence. The BSF was compelled to engage them for posing an imminent security threat. India said this incident highlights a clear pattern of repeated cross-border movement by armed narcotics syndicates operating from Pakistan. Pakistan was urged to investigate these cross-border infiltration, drug smuggling activities, and the complicity of Pakistan border guarding forces, and to take appropriate remedial measures. Islamabad was further urged to ensure respect for the sanctity of the international border, strictly observe relevant bilateral arrangements, mandate its forces to exercise effective control to prevent unauthorized movement from its side, and take definitive measures to prevent the reoccurrence of such events. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
7: The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in falling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family.
11: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independent Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
7: The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. We have a report.
12: India has put up an impressive performance at this year's Games, securing 4th place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India's women's flag bearer for the closing ceremony has been confirmed as shooting star Neeru Dhanda, who will proudly carry the tricolour in Nagoya. The ceremony will feature traditional closing proceedings, including the parade of athletes and the formal conclusion of the game. With Bikas report, Payal Sharma for Akashwani News.
7: In men's cricket, India secured the three-match ODI series against the West Indies 2-1, winning the first two matches before suffering a five-wicket defeat in the final game in Molanpur, New Chandigarh, last night. Opting to bat first, India posted 351 for 7 in their allotted 50 overs, with Rohit Sharma hitting 92 and KL Rahul unbeaten 129 runs, setting the West Indies a target of 352. In reply, the visitors chased down the target, scoring 352 for 5 in 48.2 overs. West Indies captain Shai Hope, who scored 162, was named player of the match. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD said the conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbha. Some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and north interior Karnataka during the next 2 days. The weather agency said that the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds may prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh, Kerala, Karaikal, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura during the day. Meanwhile, Konkan and Goa are expected to experience hot and humid weather till tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
13: Thank you, Nishik. The Indian Express in an exclusive report says, under GST regime, arrest powers likely to be removed. Hindustan Times quotes Finance Minister Nirmala Sitharaman, Uncertainty now a standing condition of international economy. RBI Governor Sanjay Malhotra says, global financial risk emerging, states the Economic Times. External Affairs Minister S. Jayashankar says, India backs dialogue diplomacy to end Ukraine conflict, according to the Sunday Statesman. Oman barred radical pilot whom Fly Dubai hired, reports Sunday Pioneer. Five Indian nationals rescued from Strait of Hormuz is headlined by the Asian Age. And finally, India wins 11 gold medals in the last 2 days of Asian Games, finishes with a total of 21 to jump to the 4th place in medals tally, reports the Sunday Times in its top story. And with that, it's back to you, Nishit.
7: Thank you, Saira. And now before we end the

0: for closing ceremony. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रंथु बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
3: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
4: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
3: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
4: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
3: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
4: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
3: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
7: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
6: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
7: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्यभर में अगले 10 दिनों में पूरा होगा बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा, देश के सभी लोगों को आभा ID से जोड़ने की पहल जारी, झारखंड को भी मिलेगा लाभ। कोल इंडिया कर्मियों को मिलेगा 1,10,250 रुपए बोनस, 15 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान, झारखंड के बाजार में आएंगे 660 करोड़ रुपए। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को IIT कानपुर देगा निःशुल्क कोचिंग, करीब 10,000 छात्र छात्राओं को JEE और नीट की भी कराएगा तैयारी। और एशियन गेम्स 2026 का आज होगा समापन, गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की 4 खिलाड़ियों को 40-40 लाख रुपए देगी झारखंड सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के श्रीनिवासन ने बताया कि निर्बाध बिजली के लिए मरम्मत कार्य 10 दिनों में पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका और मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को भी यह आदेश भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पंडाल और बिजली तारों के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह भोपाल में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
9: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा है कि देश के सभी लोगों को आभा आईडी से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसके तहत झारखंड के भी सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आईडी से जोड़ने के बाद आदमी की सभी चिकित्सा जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से हमेशा के लिए दर्ज रह सकेंगे। श्री वर्णवाल रांची में विकसित भारत 2047 के लिए खनन क्षेत्रों में सुधार पर आयोजित एक

0: कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कोल इंडिया के कर्मियों को इस बार 1,10,250 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। बोनस का भुगतान 15 अक्टूबर से पहले कर दिया जाएगा। बोनस का लाभ कोल इंडिया लिमिटेड के करीब 2,00,000 स्थायी कर्मियों को मिलेगा। इसके अलावा ठेके पर काम कर रहे कर्मियों को भी बोनस एक्ट के प्रावधान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस बोनस से झारखंड के बाजार में लगभग 660 करोड़ रूपये आएंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची स्थित श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश प्रगति की रफ्तार पर चलता रहे, यही उनकी कामना है।
1: परमात्मा कहीं है और किस रूप में है ये मानने का विषय है। परमात्मा की आस्था हम सब पर बनी रहे, हमारा देश प्रगति की रफ्तार पर चलता रहे और हम जैसा मानते हैं कि हमारा राज्य निश्चित रूप से देश के प्रगतिशील राज्यों में माना जाए, ऐसा हमारा विश्वास।
0: इस अवसर पर राज्यपाल के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार के कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देगा। इससे यहां पढ़ने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इन विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। दिसंबर महीने तक कल्याण विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच इस संबंध में एमओयू होने की उम्मीद है। राजधानी रांची के चौक चौराहों पर अब यातायात पुलिस के जवानों के लिए आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि शहर के प्रमुख 20 स्थानों पर तैयार हो रहे इन हाईटेक ट्रैफिक पोस्ट में जवानों के लिए कई सुविधाएं होंगी।
2: ट्रैफिक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, इसका दो पर्पज है। एक तो हमारे जो जवान और खासकर जो हमारी महिला फोर्स है उनके वॉशरूम के लिए और उनके लंच करने के लिए। तो जो कई बार एक शिकायत आती है कि ट्रैफिक पोस्ट के अंदर ले जाके हमसे पैसे मांगा, ऐसा आरोप ना लग सके और उसको एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जाए।
0: जमशेदपुर के सीताराम डेरा में पिछले दिनों हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिम ने बताया कि पुरानी दुश्मनी के कारण यह गोलीबारी की घटना हुई थी।
3: 11:30 बजे रात को 1 तारीख को 3 अपराधियों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 देसी पिस्टल और कारतूस और 1 होंडा स्कूटी बरामद हुआ, जिससे वो घटना कारित किए थे और जिससे वो भाग रहे। भागने के दौरान एक अभियुक्त पुलिस के चेज में गिर गया, जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया। बाकी इन लोगों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा। एक राज सिंह कश्यप उर्फ कोदू, जिसे 5 केस दर्ज है और एक दशरथ शुक्ला है, जो 12 केस ऑलरेडी दर्ज है।
0: उपराजधानी दुमका के कमार दुधाने स्थित तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में 2 दिवसीय 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन दुमका के सांसद नलिन सोरेन और जामा विधानसभा के विधायक सह जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉ लुइस मरांडी ने किया। डॉ मरांडी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में राज्य भर से करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
4: स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रहा है। हम अध्यक्ष हैं इस आर्चरी संघ के दुमका जिला के और हमारा पूरा टीम सभी जिला से हमारा पार्टिसिपेंट आए हैं और 250 प्लेयर आए हैं। राज्य स्तर का गेम है, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का यहाँ गेम होगा, ऐसा हम लोग का प्रयास है।
0: एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य सरकार 1,60,00,000 रुपए बतौर पुरस्कार देगी। इसके तहत हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग को 40,40,00,000 रुपए मिलेंगे। ये सभी महिला हॉकी की उस टीम में शामिल थीं जिसने गोल्ड मेडल जीता है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने आज एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की हेडलाइन है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। प्रभात खबर ने लिखा है, 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज मैच पर पड़ बारिश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेपीएससी में पैसे देकर पीटी परीक्षा पास करने वाले दो भाइयों को सीआईडी ने हजारीबाग से किया गिरफ्तार। और हिंदुस्तान लिखता है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य भर में अगले 10 दिनों में पूरा होगा बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा, देश के सभी लोगों को आभा आईडी से जोड़ने की पहल जारी, झारखंड को भी मिलेगा लाभ। कोल इंडिया कर्मियों को मिलेगा 1,10,250 रुपए बोनस, 15 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान, झारखंड की बाजार में आएंगे 660 करोड़ रुपए। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर देगा निःशुल्क कोचिंग, करीब 10,000 छात्र छात्राओं को जेईई और नीट की भी कराएगा तैयारी। और एशियन गेम्स 2026 का आज होगा समापन, गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की 4 खिलाड़ियों को 40,40,00,000 रुपए देगी झारखंड सरकार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
6: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
5: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
6: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
5: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
6: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
5: पानी भी नहीं।
6: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
5: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
6: स्वस्थ बच्चा खुशियाँ अपार।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: अली अली ले मुन्ना, कैसे ऋतु? तुम्हें तो दस्त हो रहा था,
5: अभी ओआरएस और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
9: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
10: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ओआरएस का घोल बनाएं।
9: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
10: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
9: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
10: याद रखें, दस्त बंद होने पर ओआरएस बंद कर दें,
9: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: यह आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। लोक संगीत के कार्यक्रम माटी की महक में आइए सुनते हैं हो लोकगीत। कलाकार हैं बाबूराम सोए और साथी।

पूर्वाह्न की नौ बज चुके हैं और पेश खिदमत है आज का विविधा कार्यक्रम, जिसमें आज मैं आपका रेडियो साथी SB सिंह। जी आज रविवार 4 अक्टूबर 2026 मास आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सुबह 5:51 तक, उसके बाद आज मातृनवमी है। आज विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और शक संबत 1948 पर आभव, शरद ऋतु, सूर्य दक्षिणायन। आज रात लगभग 12:13 से पुनर्वसु और उसके बाद पुष्य नक्षत्र। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:10 से 11:58 तक, विजय मुहूर्त 1:33 से 2:20 तक, अमृत काल 9:57 से 11:28 तक, और आज का राहु काल 4:01 से 5:30 तक।

दोस्तों 4 अक्टूबर इतिहास, विज्ञान, अंतरिक्ष, पशु कल्याण और विश्व घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है। हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पशुओं के कल्याण, संरक्षण और उनके प्रति मानवीय संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता है। चार अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 इसका सफल प्रक्षेपण किया था। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। नासा के अनुसार इस घटना ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। स्पुतनिक 1 का वजन लगभग 83.6 किलोग्राम था, व्यास 58 सेंटीमीटर, पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 98 मिनट लगते थे। इससे रेडियो संकेत यानी प्रसिद्ध बीप बीप प्रसारित होते थे। स्पुतनिक 1 की सफलता ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस की जो दौर है उसको तेज किया। आगे चलकर इसी वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा ने उपग्रहों, मानव अंतरिक्ष उड़ान और चंद्र अभियान जैसी उपलब्धियों को गति दी। 4 से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में इसे आधिकारिक रूप दिया। 4 अक्टूबर स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण और 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी के लागू होने की स्मृति से जुड़ा है।

और अब कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां। आईना पूछता है कौन हो तुम, सच सच बताओ। वो मुस्कुराकर कहता है, जो दिखता है वही हूं। कभी रिश्तों के लिए अपना चेहरा बदलता है, कभी दुनिया के लिए खुद से ही संभलता है। किसी के सामने खुशी, किसी के सामने गम, हर चेहरे के पीछे छुपा एक अलग मौसम। कहीं आंखों में सपने, कहीं पलकों पर नमी, कहीं लफ्जों में हंसी, कहीं खामोशी थमी।

दोस्तों आज मातृनवमी तिथि है, श्राद्ध है, नवमी श्राद्ध। तो ये जो पितृतर्पण होता है उस पर कुछ पंक्तियां हैं कि जल की हर बूंद में पितरों का आशीष है, तर्पण की अंजलि में बीते कल की तस्वीर है, नमन उन चरणों को जिन्होंने राह दिखाई, अपने हिस्से की धूप देकर हमें छांव दिलाई, आज अंजलि में जल है आंखों में सम्मान, हर बूंद कहती है आपसे ही है मेरा मान, जो चले गए वे कहां हमसे दूर हुए, यादों के दीप बनकर दिल में भरपूर हुए।

पिताजी की उंगली का स्पर्श आज भी साथ है, माँ की ममता की खुशबू हर सांस के पास है। तर्पण केवल जल नहीं, श्रद्धा का संवाद है, पीढ़ियों को जोड़ता हुआ संस्कारों का प्रसाद है। जो दिया उन्होंने उसे आगे बढ़ाना है और उनके अधूरे सपनों को जीवन में सजाना है। अंजलि उठती है तो सिर स्वयं झुक जाता है, पितरों का स्मरण मन को भीतर से भीगो जाता है। हे पितृगण, स्वीकारें मेरी श्रद्धा और प्रणाम, आपकी स्मृति में ही जीवित है मेरा हर धाम।

दोस्तों, हर कहानी बस कहानी नहीं होती, कुछ अनकहे पन्नों की रवानी होती है। जो दिखता है वो आधा सच होता है, बाकी आधा किसी खामोशी में छुपा होता है। हर किरदार के भीतर एक और किरदार है, हर मुस्कान के पीछे कोई इंतजार है। शुरुआत पढ़कर फैसला मत करना, अंत तक जाकर ही किसी को समझना। कुछ आवाजें शब्दों में नहीं मिलती, कुछ आंखें बोलती हैं मगर पढ़ी नहीं जातीं।

लफ्जों की भी अपनी एक खुशबू होती है, खामोशी में भी अपनी एक आरजू होती है। एक लफ्ज दिल में उतर कर घर कर जाता है, एक लफ्ज बरसों बाद भी याद आता है।

0: कुछ वाकई होते हैं जो होनी बन जाते हैं, कुछ हादसे उम्र भर अनहोनी कहलाते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रोताओं, आज हम मुलाकात कर रहे हैं इटे तुर्तु महिला समिति पासिया की कोषाध्यक्ष से। आइए हम उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम?
1: मेरा नाम पूनम बोधरा।
2: आप कोषाध्यक्ष हैं तो आप लोग आपका जो महिला समिति है इसमें आप लोग फिलहाल क्या क्या काम कर रहे हैं?
1: हम लोग सप्ताह में बचत करते हैं।
2: बचत में किस तरह का बचत करते हैं आप लोग?
1: सप्ताह में 20 रुपया बचत करते हैं।
2: अच्छा, जमा करते हैं आप लोग। हाँ। ये 20 रुपया किस तरह से जमा करते हैं, क्या मद में?
1: क्या बोलेंगे, बचत करते किसी दीदी लोग को जो ज़रूरत पड़ेगा कुछ बीमारी होने से, वो लोग ले सकती है इसीलिए।
2: अच्छा, तो इसमें आप लोग कितना सदस्य हैं?
1: 13 सदस्य हैं।
2: 13 सदस्य हैं। 13 सदस्य में सिर्फ 13 सदस्य ही जमा करते हैं कि औरों से भी आप लोग जमा लेते हैं?
1: नहीं, 13 सदस्य ही जमा करते हैं।
2: अच्छा, तो हर सप्ताह जमा करते हैं 20 रुपये।
1: हाँ।
2: तो 13 जन का होता है 260 रुपये।
1: जी,
2: सप्ताह में 260 रुपये। और इस तरह से आप लोग हर महीना जमा करते हैं ये? हाँ। ये कहाँ जमा करते
1: हैं? हमारा गांव में ही जमा करते हैं।
2: गांव में ही जमा करते हैं। फिर आप लोग का
1: दीदी
2: खाता है?
1: हाँ, दीदी लोग लेती है तो दीदी लोग को देते हैं, नहीं लेती है तो खाता में हम लोग जमा कर देते हैं।
2: अच्छा, आप लोग का खाता? हाँ, भी है। आप लोग कहाँ खाता खोले?
1: पूर्णिया में।
2: पूर्णिया में,
1: झारखंड ग्रामीण बैंक में।
2: अच्छा, तो इसको जमा करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है?
1: सब कुछ फ़ायदा हो रहा है। जिसको ज़रूरत होगा तो बच्चा सब भी पढ़ रहा है, उसी समय पैसा नहीं मिलेगा माँ बाप को तो उसी समय हम लोग उन लोग को भी देते हैं।
2: अच्छा,
1: और जो कोई बीमार होता है उन लोग को भी पैसा का ज़रूरत होता है, उन लोग को भी हम लोग देते हैं।
2: और मतलब आप लोग समिति के सदस्य सिर्फ नहीं, गांव के और महिलाएं भी जो लेना चाहती है आप उनको भी ऋण देते हैं?
1: नहीं, उन लोग को नहीं देते हैं क्योंकि उन लोग नहीं जुड़ा है ना समूह में, इसीलिए हम ही लोग आपस में 13 सदस्य में बांट।
2: अच्छा, 13 सदस्य में से ही अगर किसी को ज़रूरत होती है तो आप लोग ऋण लेते हैं।
1: हाँ।
2: तो ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज भी आप लोग जमा करते? हाँ। होंगे बाद में
1: जमा
2: तो,
1: करते हैं।
2: तो ये किस तरह से आप लोग तय किए हैं?
1: 1 रुपया सब लेते हैं, 100 रुपये में।
2: 100 में 1 रुपया? हाँ, आप लोग लेते हैं। तो ये जो समिति है आपका, ये कितने दिनों से आप लोग चला रहे हैं?
1: 2002 से हम लोग चला रहे थे। अभी तो 2000 क्या बोलेंगे, 24 हो गया,
2: 22 साल हो गया।
1: हाँ।
2: तो इस 22 साल में आपके पास अच्छी पूंजी आ गई होगी?
1: हाँ, आ गया।
2: तो इससे आप लोग अभी तक में किस तरह का ऋण दिए हैं किसी को भी?
1: किसी को? हम लोग का गांव में तो ज़्यादा बागान करते हैं, वो बागान करने वाला सब कोई बीज सब खरीदने के लिए ले जाती है और बगान करके वो लोग आपस करती है, वैसे ही करते हैं।
2: अच्छा, तो ये आप लोग 13 सदस्य एक पूंजी बनाए हुए हैं, बचत कर रहे हैं।
1: हाँ।
2: तो और भी जो सदस्य है गांव में और भी तो लोग हैं?
1: हाँ, उन लोग भी, हम लोग का यहाँ 5 समूह चल रहा है।
2: अच्छा अच्छा। हाँ। तो उन वो भी चलाते हैं?
1: हाँ, लोग भी चला रहे हैं।
2: तो आप लोग सिर्फ पैसा जमा करने का ये काम कर रहे हैं और कुछ व्यवसाय वगैरह नहीं करना चाह रहे हैं? बहुत से लोग ऐसा है कि और भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि दुकान खोलते हैं, है ना,
1: बिजनेस करने का। तो उस सब हम लोग का इधर दिया तो मैं चलेगा कि नहीं बोल करके, हम लोग चाहते हैं दुकान सब कुछ चलाने के लिए।
2: तो ये जो आपको समिति चलाने का आप लोगों ने सोचा, इस तरह समूह बनाने का आप लोगों ने सोचा, ये आप लोग कैसे सोचे? अपने आपस में ही सोचे कि किसी ने आप लोगों को बताया कि ऐसे करना चाहिए?
1: नहीं, किसी ने हम लोग को उधर से बताया।
2: हाँ,
1: पहले तो क्या बोलेंगे, TRTC से दीदी लोग आती थी, वो लोग पहले बता रही थी तो हम लोग समूह में जुड़े और बचत किए थे। अभी तो JSLPS में हम लोग को जुड़ा गया।
2: अच्छा अच्छा, तो JSLPS से आप लोग को इस समूह में क्या सहायता मिल रही है?
1: हम लोग को 15,000 रुपया अनुदान मिला है पूंजी।
2: हाँ।
1: तो ये आपस में दीदी लोग ये करके बांट करके बिजनेस करो बोल करके।
2: तो ये 15,000 रुपया आप लोगों ने बांटा?
1: हाँ।
2: सारे 15,000 को बांट के खत्म किया कि कुछ को रखा?
1: हाँ, दीदी लोग लिया है ऋण के रूप में, वो लोग आपस भी करती है और फिर जरूरत होता है तो लेती भी है।
2: अच्छा, ये आप हाँ। लोग को कब तक वापस करने का तय किए हैं समय?
1: हम लोग महीना में
2: नहीं, महीना में सारा तो नहीं जमा करते।
1: हाँ, सारा हैं सारा तो नहीं जमा करते, कुछ कुछ क्या बोलेंगे, हम लोग ये बनाते हैं डाटा बनाते हैं इतना रुपया करके जमा करेंगे। अभी मान लो क्या बोलेंगे 5,000 रुपया लिया है दीदी, तो वो 500 रुपया करके जमा करेगा तो उसी तरह हम लोग बनाते हैं।
2: अच्छा,
1: महीना में? हाँ, 500 रुपया
2: महीना में 500 आप लोग तय करते हैं? हाँ। तय करते हैं आप लोग कि इतना उनको जमा करना है
1: और ब्याज भी वैसे ही देता है और वैसे ही कट जाता है ब्याज भी।
2: अच्छा, मान लिया, हाँ हाँ, मान लिया कोई नहीं दे पाती इस महीना, जैसे कि 2 महीना से वो दे रही है पर इस महीना उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया कि वो नहीं जमा कर पा रही है, वैसे स्थिति में आप लोग कैसे चलाते हैं?
1: वैसे स्थिति में तो हम लोग क्या बोलेंगे 3 महीना तक जमा करने के लिए वो दीदी लोग बोलती है 3 महीना जमा करो, 3 महीना तक उसको छूट देते हैं।
2: अच्छा, शुरू में 3 महीना छूट देते हैं?
1: हाँ, उसके बाद वो जमा करती है।
2: नहीं नहीं, जैसे कि जमा कर रही है, करते करते में अचानक में किसी महीना ऐसा हो गया कि वो नहीं जमा कर पा रही है, तो ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से समिति
1: क्या बोलेंगे ब्याज को हम लोग जोड़ते हैं?
2: अच्छा, ब्याज जोड़ देते हैं ज्यादा?
1: ब्याज, ब्याज को जोड़ देते हैं।
2: तो अभी तक में किस किस चीज के लिए वो लोग लिए, सिर्फ खेती करने के लिए ही कि बच्चों का पढ़ाई के लिए भी?
1: हाँ, बच्चों का पढ़ाई के लिए भी लिए है और खेती करने के लिए भी लिए है और कुछ छोटा मोटा जरूरत होता है तो उसी में भी वो लोग ली है।
2: अच्छा अच्छा, तो और भी आप इस समिति के अंतर्गत और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ पैसा तो जमा कर रहे हैं, और किस तरह का इसमें काम करना चाह रहे हैं?
1: अच्छा से पूंजी सब पैसा सब मिलेगा तो फिर दुकान वकान चला के अच्छा से बच्चा सबको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं।
2: तो इसमें आपकी जो और 13 सदस्य हैं वो लोग इच्छुक हैं?
1: हाँ, इच्छुक है।
2: तो आप लोग किस तरह का दुकान चलाना चाह रहे हैं, क्या दुकान? कपड़ा दुकान?
1: कपड़ा दुकान सब हम लोग का गांव में देहात में तो नहीं मिलता है ना, बाजार जाना पड़ता है तो कपड़ा दुकान का बहुत जरूरी है हम लोग के गाँव में।
2: अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने प्लानिंग किया होगा कि हम लोग कहाँ से लाएंगे या कितना पूंजी लगाएंगे?
1: प्लानिंग तो हम लोग करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं।
2: नहीं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं गांव-गांव में छोटी गाड़ी ही सही आती जाती है, तो आप लोग को अभी तो सामान लाने ले जाने में भी सुविधा होगी। तो सामान आप लोग जैसे कि कपड़ा दुकान मान लिया करेंगे, जैसे कि मैक्सी हुआ या फिर पेटीकोट वगैरह अगर आप लोग लाते हैं तो लाने में सिर्फ आप लोग को तो लाने में सिर्फ दिक्कत होगी, थोड़ा सा लाना पड़ेगा क्योंकि बेचने का तो आप लोग खुद ही आपस में खरीद सकते हैं क्योंकि हर किसी को तो ज़रूरत होती है इसका।
1: नहीं, पहले हम लोग पेटीकोट सब और ब्लाउज सब लाते थे और साबुन सब समय बेच रहे थे, तो दीदी लोग आपस में बोलती है कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, वैसे बोलते तो हम ही कर देते थे उन लोग को।
2: अच्छा,
1: हम ही खरीद के लाते हैं और हम ही बेच देते हैं।
2: हाँ।
1: और हम लोग का फायदा हुआ तो 3,000 रुपया का सामान खरीदते तो हम लोग का 4,500 रुपया ये निकल गया।
2: अच्छा, फायदा हुआ था?
1: हाँ, फायदा हुआ था।
2: तो आप लोग इसको चलाएंगे तो अच्छा से ये होगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जिसको आप लोग दुकान में बैठाएंगे आप उसको कुछ पैसा दीजिए वेतन हर महीना, जो भी उससे फायदा होगा
1: तब तो होगा।
2: तब तो वो जरूर बैठेंगी है ना,
1: और क्योंकि सबको फायदा मिलेगा और एक ही जन काम करेंगे तो
2: वो भी नहीं करने खोजेगी और उनको मान लिया उस पैसा को आप लोग सिर्फ समिति में ही जमा कीजिएगा तो उनको लगेगा कि हम बेकार में क्यों अपना समय बर्बाद करें, है ना।
1: तो कुछ नहीं फायदा भी नहीं निकलेगा।
2: तो उस तरह से किया जा सकता है कि जिसको माने बारी बारी से 1 महीना ये 1 महीना वो, उस तरह से, या फिर कोई अगर एक ही आदमी इसमें इंटरेस्टेड है तो एक ही आदमी को आप दुकानदार की तरह डिपोर्ट कीजिए और उसको आप लोग वेतन दीजिए
1: तो ठीक है।
2: उसमें तो अच्छा से चल सकता है। तो आप को क्या लगता है इस तरह का समिति वगैरह चलाने के लिए क्या होना चाहिए?
1: जागरूकता होना चाहिए,
2: जागरूकता होना चाहिए, पढ़े लिखा होना चाहिए।
1: हाँ।
2: तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या करने से गांव में देखिए सुविधा तो बहुत सारा दी हुई है सरकार। हाँ। आजकल मुफ्त शिक्षा है, किताब है या यूनिफॉर्म भी मुफ्त में मिलता है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं होती है पढ़ गांव के शिक्षा की। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से अच्छा से शिक्षित किया जा सके?
1: हाँ, माँ बाप लोग ही क्या बोलेंगे, बच्चा सबको अच्छा से भेजेगा तो बच्चा सब शिक्षित जरूर हो गई होगा। इसलिए माँ बाप लोग बात करने से भी कोई कोई तो हड़िया पी करके वो लोग नहीं भेजने खोजती है ना।
2: थोड़ा बड़े हो जाने हाँ। से उनको लगता है कि हम काम करवाएंगे तो कुछ पैसा आएगा।
1: हम तो समूह में जुड़ करके मेरा बहुत फायदा हो गया।
3: इस भेंट

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये

0: केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
4: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

रसरंजन। इस कार्यक्रम में यह गया फिल्म धड़कन का शीर्षक गीत, आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की।

0: ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स
1: फिर एक बार रफ़ी साहब की आवाज़। फिल्म का नाम है लोफर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत रसरंजन कार्यक्रम में और आकाशवाणी चाईबासा से ये आ गया फिल्म संगीत का हमारा दूसरा कार्यक्रम, जिसमें आज हम लेकर आए हैं चंद मिले जुले गीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में ये आवाज़ फनकार मुकेश चंद्र माथुर की।

किशोर कुमार के गाए इस गाने के साथ ही समाप्त होता है आज का फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी चाईबासा है FM के 101.7 MHz पर। पूर्वान्ह के 10:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची

0: लक्षण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम जोहार रांची को लेकर आपके साथ है आपकी दोस्त सुप्रीता
2: और साथ में हूँ मैं आपकी दोस्त रचना। कुछ लोग शोर मचाकर अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने समय का इंतजार करके इतिहास लिखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रचना जी आपने, और आज की ये सुबह हमें सीख भी देती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इन्हीं खूबसूरत विचार के साथ आज के जोहार रांची के पन्नों को पलटते हैं और कहते हैं
2: जोहार नमस्कार।

0: सच ही है सुप्रीता, जब बात हमारे जिंदगी से जुड़ जाती है तो सही मायनों में हम कहीं खो जाते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने पैसे, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं, बस एक
0: इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी के बिताए और कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए।
0: क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, छोटे छोटे सपने देखिए, मुस्कुराइए।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन 1582 ईस्वी में प्रोप गेगरी 13वें ने आधुनिक गेगरोरी कैलेंडर को आज ही के दिन लागू किया था।
1: और 1824 ईस्वी में आज ही के दिन मैक्सिको ने नया संविधान अपनाया और एक संघीय गणराज्य बना।
0: और 1977 में आज ही के दिन विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा। 1957 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिससे अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई।
1: और इसे कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। और बैकुनूर दुनिया का सबसे पुराना और आज भी सक्रिय सबसे बड़ा स्पेसपोर्ट यानी अंतरिक्ष स्टेशन है। स्पुतनिक 1 का व्यास लगभग 58 सेंटीमीटर था, जो एक बड़ी बास्केटबॉल के आकार का था। इसने पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 96.2 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट का समय लिया, और रेडियो सिग्नल बंद होने के बाद भी 3 माह तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा।

कार्यक्रम में आइए अब बातें करें ऐसे लोगों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो सबसे पहले आपको बताएं कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के आलोचक और

0: इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आज ही के दिन हुआ था।
1: महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी रहे श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
0: और अगर बात करें तो आज एक बॉलीवुड अभिनेत्री भी अपना जन्मदिन मना रही है।
1: जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं सोहा अली खान की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 4 अक्टूबर 1978 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था।
0: इनके फिल्मी करियर की अगर बात करें तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 2004 की फिल्म दिल मांगे मोर से की थी,
1: लेकिन इन्हें वर्ष 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती से पहचान मिली और इनके बेहतरीन अभिनय के लिए सबसे ज्यादा इन्हें इसी फिल्म से पहचान मिली। तो आइए इन्हीं की अभिनीत फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

तो पिता जो है रांची में, अब बातें करते हैं उनकी जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो सन 2011 में आज ही के दिन राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भागवत आजाद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। कस्तूरी बाई, जो कि भारत की स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, सन 1979 में आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। और अगर हम कहें रचना जी, तो बस यादें ही इनकी रह जाती है।

0: कार्यक्रम जोहाराची में आइए अब कुछ बातें खेल की। तो आपको बताएं श्रोताओं कि भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। हॉकी और क्रिकेट में पुरुषों ने गोल्डन डबल पूरा किया तो तीरंदाजी में कुमकुम और गोल्फ में प्रणवी उर्स ने ऐतिहासिक स्वर्ण जीता। अगर बात करें कुश्ती की तो कुश्ती में अमन ने स्वर्ण जीता। कुल 10 पदक भारत ने जीते और ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है रचना जी।
1: बहुत गर्व की बात है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कुमकुम मुहाद ने एशिया खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय तीर अंदाज बन गई है और कुमकुम ने कोरियाई वर्चस्व तोड़कर ये उपलब्धि हासिल की।
0: और अगर हम बात करें पुरुषों की रिकॉर्ड व्यक्तिगत स्पर्धा में तो कांस्य पदक के फॉलोअर्स मुकाबले में दो भारतीयों ने टक्कर ली थी। इसमें नीरज चौहान ने हमद वतन शीर्ष वरीयता प्राप्त
1: धीरज
0: को मतलब 6-4 से हरा कर बाजी जीती थी।
1: क्योंकि ये दोनों ही थे जो भारतीय खिलाड़ी थे।
0: बिल्कुल।
1: और प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। उन्होंने इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी रजत जीतकर दोहरी सफलता हासिल की।
0: और अगर हम बात करें अमन की ही तो भारतीय पहलवानों ने शनिवार को यानी कि कल एशियाई खेलों में एक स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हैं।
1: और अमन सहरावत ने स्वर्णिम दाव लगाया तो अंतिम प्रिंघाल को रजत से संतोष करना पड़ा और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता और दीपक ने 60 साल बाद ये पदक दिलाया था।
0: तो अगर हम बोले तो ये गलत नहीं होगा रचना जी कि खिलाड़ियों ने दिखा दिया अपना दम और कर लिया हर मैदान फतेह।

0: तो अब बातें मौसम की सुप्रीता, अक्टूबर का मंथ यानी फेस्टिव सीजन का शुरुआत, यानी कि
1: बिल्कुल
0: इस समय में त्योहार शुरू हो जाते हैं हमारे। तो रांची में आज मुख्यतः साफ और धूप वाला दिन रहने की संभावना है। सुबह के समय मौसम सुहाना रहेगा और दिन चढ़ने के साथ ही धूप थोड़ी तेज महसूस हो सकती है।
1: बिल्कुल। और अगर मौसम विभाग की माने रचना जी, तो उनके अनुसार आज का अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस

0: रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई जा रही है।
1: फिलहाल बारिश की संभावना काफी कम बताई जा रही है, इसलिए बाहर निकलने वालों के लिए मौसम सामान्यतः अनुकूल रह सकता है।
0: तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो रांची में आज का दिन रहेगा साफ, आसमान रहेगी बिल्कुल साफ, हल्की गर्माहट और सुहाने मौसम के नाम।
1: और इसी खूबसूरत मौसम के साथ अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

0: सच में सुप्रीता, मौसम तो सच में सुहाना हो गया और गाना भी तुमने बहुत अच्छा सुनवाया। तो इस मौसम के चलते ही अब मौसम खूबसूरत है तो हम कहीं घूमने भी जा सकते हैं, क्या
1: बिल्कुल
0: कहती हो?
1: बिल्कुल, आप दोनों, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली रचना जी। तो घूमने का अगर आप मन बना ही रहे हैं तो एक ऐसी जगह का मैं नाम बताऊंगी और जिक्र करूंगी जहां जाना लोगों के लिए कहा जाता है कि वो मिनी स्विट्जरलैंड ही है। तो आपको बताते हैं कि यूँ तो हिमालय का कोई भी स्थान खूबसूरती से कम नहीं है, तो हम सभी
0: हाँ
1: जानते हैं।
0: हाँ सही बात है।
1: लेकिन इसमें से कुछ एक पहाड़ के कस्बाई सौंदर्य को लेकर काफी लोकप्रिय हैं और डलहौजी उनमें से एक है। डलहौजी जाना पता है रचना जी किसी परियों के कस्बे में कदम रखने जैसा है। इसके करीब ही देवदार के पेड़ों से घिरा खजियार है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पहुँचने की तो आपको बताएं डलहौजी से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा वहाँ से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर पठानकोट है। पठानकोट ही यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से आगे डलहौजी तक के लिए कैब या बस आप ले सकते हैं। और अगर बात करें तो दिल्ली से डलहौजी की दूरी करीब 595 किलोमीटर है और इसे तय करने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। यहाँ सड़क
0: तो तुम अभी कह रही थी ना कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार को, ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो वाकई में ही मिनी स्विट्जरलैंड है। खूबसूरत खजियार, खजियार ये एकदम हरी भरी प्लेट जैसा एक मैदान है जिसके बीच में एक खूबसूरत झील है और चारों ओर करीने से सजे देवदार के पेड़ आसमान से बातें कर रहे थे। यहाँ के पेड़ों के बीच बीच से बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियां भी आपस में अटखेलिया करती हुई आपको दिखेंगी। और यहीं से थोड़ा अलग आगे भल्ली देवी का मंदिर भी है, तो ये करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर है और थकाने वाली चढ़ाई है। कहते हैं कि ये डलहौजी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। चंबा के रूट से खजियार जाने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत सफर है। रास्ते में एक पहाड़ी खेत और सड़क के साथ चलती हुई रावी नदी आपको कई याद आती रहेंगी। और यहाँ रावी नदी के ऊपर बसे चंबा में कई पुराने मंदिर भी हैं। वहां स्थित भरमौर के मंदिर और मणिमहेश झील की अपनी ही एक खासियत है। तो अगर आप भी पहाड़ों के शौकीन हैं और हरियाली चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो यहाँ जाने का आप प्लान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,

0: तो देखो सुप्रीता, अब समय हो चला है, तो
1: हम्म,
0: चलते चलते अपने श्रोताओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होती, कई बार शांत रहने वाले लोग ही सही समय आने पर सबसे बड़ा जवाब देते हैं।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज के जोहार राशि के पन्नों को अब यहीं समेटते हैं। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी कामना के साथ आज के इस अंक से सुप्रीता और
0: रचना को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे आपकी पसंद थोड़ी ही देर में।

अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म मुझसे शादी करोगी से। शब्द रचना है जलील शेरवानी की और इस गाने की धुन बनाई है साजिद वाजिद ने, और इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लिवे से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरेगी से भागवत वर्मा।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, मजहूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और अन्नू मलिक का संगीत। इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

कार्यक्रम में चलते चलते आइए अब सुनते हैं सुपर 30 से ये गाना। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत है अजय अतुल्य का। इस गाने की फरमाइश करने वाले श्रोता हैं आप सब, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

इसी गीत के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी आपकी सखी शिल्पी और निधि।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहनों आप सबका, और आज मेरे साथ हैं शिल्पी।
1: नमस्कार बहनों, मैं भी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगी और आप प्रसन्न भी होंगी।
0: हाँ शिल्पी, और हमारी बहनें काफी उत्साहित भी होंगी, है ना?
1: बिल्कुल,
0: आने वाले त्योहार के लिए। और बहनों, हम सभी त्योहार मनाते हैं, ये आनंद उत्सव का समय होता है।
1: हाँ निधि, हम अपने देवी देवताओं पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो।
0: हाँ शिल्पी, हम सब अपने जीवन को उज्जवल तो बनाना

0: करते हैं। साथ ही हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, अपने जीवन के साथ साथ हम सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखें।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही बहनों। हम पशुओं की बात करना चाहेंगे क्योंकि आज यानी 4 अक्टूबर को हम हर वर्ष विश्व पशु दिवस मनाते हैं।
0: हाँ शिल्पी, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में पशुओं के कल्याण, संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना।
1: और सखियों, इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग पशुओं के महत्व को समझें, जानें और साथ ही सहानुभूति से पेश आएं, उनके साथ क्रूरता न बरतें।
0: बिल्कुल, बहुत बार हमने देखा है कि पशुओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग, और जहाँ अपने लाभ की बात आती है तो हम अक्सर पशुओं के बारे में उतना नहीं सोचते, सहानुभूति से पेश नहीं आते। खास करके जो बच्चे होते हैं जो इतने समझदार नहीं होते हैं, तो ये सब बातें उनको सिखाने की ज़रूरत है शिल्पी। और बहनों, इसकी शुरुआत जो है विश्व पशु दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई ये हम बताना चाहेंगे कि जर्मन लेखक और कार्यकर्ता हेनरिक जिमरमैन ने की थी इसकी शुरुआत। पहला विश्व पशु दिवस 24 मार्च 1925 को बर्लिन में मनाया गया था और इसके बाद यह हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा।
1: बहनों, हमारे जीवन और प्रकृति में जानवरों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। हमें जानवरों से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जानवर खाद्य श्रृंखला के जरिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं और इस तरह जीवों की संख्या नियंत्रित भी रहती है। कुछ पशु पक्षी हमारे वातावरण में गंदगी हटाने का काम भी करते हैं क्योंकि वे सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाकर पर्यावरण को साफ भी करते हैं।
0: हाँ, ये खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की जो बात तुमने बताई, ये बहुत जरूरी है कि हर एक जीव का अपना एक महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: और हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पशु या कोई भी जीव जंतु जो इसमें है वो बेकार है। सबका अपना अपना महत्व है। और जैसा तुमने कहा कि कुछ ऐसे भी पशु पक्षी हैं जो वातावरण से गंदगी को साफ करते हैं, तो हमें तो भाई उनका धन्यवाद ही करना चाहिए। और डेयरी, ऊन, रेशम और चमड़ा उद्योग पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देता है।
1: और बहनों, कुछ जानवर हमारे घरों की रखवाली भी करते हैं इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं वो। इसलिए पशु और कीट फूलों का परागण करके पौधों के विकास और नए पेड़ पौधों को उगने में भी वो मदद करते हैं।
0: तो छोटे छोटे पक्षी जो हैं, कीट पतंग हैं, वो भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। तो बहनों, हर साल दुनिया भर में एक और भी हम विषय पर जोर देना चाहेंगे कि पशु दिवस के बारे में तो हमने बता दिया अपनी बहनों को, तो हर साल दुनिया भर में 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है और यह सबसे बड़ा वार्षिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है।
1: और बहनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1999 में हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक इस सप्ताह को मनाने की घोषणा की थी।
0: हाँ, और 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और 10 अक्टूबर 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि लागू की गई थी। तो ये तो इसका छोटा सा एक इतिहास हो गया।
1: बिल्कुल बहनों, वर्ष 2026 का विषय है रॉकेट क्रांति, जो अंतरिक्ष प्रशिक्षण और पुनः प्रयोजित रॉकेटों का स्टार्टअप हो रहे हैं। तीव्र बदलावों पर आज ये केंद्रित है।
0: हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बदलाव जो है वो तो आधुनिक युग में बहुत तेजी से हो रही है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो यही है जैसा शिल्पी तुमने बताया, और छात्रों और आम जनता को भी अंतरिक्ष अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि लोग अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी लें, जागरूक बने। और जो छात्र हैं जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं।
1: और निधि, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अभी के बच्चे हैं उन्हें खास दिलचस्पी है इसमें, है ना? तो अपने घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनको इसके बारे में हमें जरूर बताना चाहिए।
0: ये सब जो दिवस मनाए जाते हैं ना, वो उनका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जानें। तो अब ज्ञान की बातें तो हमने कर ली शिल्पी, अब ज्ञान के साथ साथ तो तुम जानती हो मनोरंजन भी जरूरी है।
1: बिल्कुल निधि,
0: तो अब ये गीत सुनते हैं बहनों।

0: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: तो गीत तो बहुत ही प्यारा था शिल्पी, और गीत तो हमने सुनवा दिया बहनों को, और अब कौन सी बातें हैं बतानी बहनों को?
3: और बहनों को हमेशा हम बात करते हैं, कुछ न कुछ अच्छी जानकारी सखियों को देते हैं। तो आज जैसा कि दिन है, हम पटवृक्ष पे बात करेंगे, यानी जीवन की संध्या को बनाए सार्थक हमारे जो बुजुर्ग हैं।
2: वटवृक्ष यानी जिसकी छाओ में हम
3: बिल्कुल
2: बहुत कुछ सीखते हैं और संरक्षण भी पाते हैं, तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो वटवृक्ष के समान है, ये तो हम सभी ने महसूस किया होगा।
3: तो सखियों, जीवन की संध्या केवल उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान, संस्कार और सुनहरी यादों का अनमोल खजाना है।
2: हाँ, जिस तरह एक विशाल वटवृक्ष, जैसा कि हमने कहा, अपनी छाया में अनेक जीवों को आश्रय देता है, उसी तरह हमारे बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभव और संस्कारों से पूरे परिवार को जोड़कर रखते हैं।
3: बिल्कुल निधि, और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की खुशियां, बच्चों को भविष्य को गढ़ने में और उनके सपनों को पूरा करने में लगाया। इसलिए बहनों, अब समय है कि हम उनकी संध्या को प्रेम, सम्मान, अपनत्व, मीठी बोली बोलकर और खुशियों से सार्थक बनाए।
2: हाँ बहनों, बुजुर्ग हमारे परिवार की वह नींव है जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है, और उनकी जो संध्या है उसको संध्या यानी कि जब वे मान लीजिए कि रिटायर हो गए हैं,
3: ढलती उम्र है
2: और अब पहले जैसी उनकी जीवन शैली नहीं रही, तो इसे हम कह सकते हैं कि जीवन की संध्या है, तो उसको वो सार्थक कैसे बना सकते हैं, इसके लिए तो भाई जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको ही कुछ कदम उठाने

0: होंगे, है ना। तो जैसे उन्हें अपना समय देना, बैठकर बातें करना, सुनना, कुछ पुरानी यादों को उनसे साझा करना, छोटी छोटी बातें ही सही पर चेहरे पर खुशियां लाना, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया, तो यही उनकी जो ज़रूरत है इस उम्र
1: बिल्कुल
0: में।
1: निधि
0: लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाती हैं।
1: बिल्कुल निधि। और इसलिए हम समय समय पे अपनी सखियों को बताते हैं कि बच्चों को भी दादा दादी नाना नानी के साथ कुछ पल बैठाएं, आदत डालें शुरू से, ताकि वे भी परिवार की जो परंपरा है उसको जानें और उनके पास अपने जीवन की अनगिनत बातें हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जीवन के बहुत सारी रोचक किस्से कहानियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे जो ये तीसरी पीढ़ी है, एक जीवंत पुस्तकालय है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे हैं ना, जो अपने माता-पिता से जो बातें नहीं कह सकते, वो अक्सर अपने बुजुर्गों से कहते हैं, जैसे दादा-दादी हुए, नाना-नानी हुए, और उनसे ज़्यादा वो जुड़े रहते हैं
1: बिल्कुल
0: भावनात्मक रूप से। तो बहनों, जैसे किसी इमारत को मजबूत बनाने के लिए उसकी बुनियाद यानी नींव का मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही परिवार में खुशहाली हो, उन्नति हो, इसके लिए घर के बड़ों का सम्मान, उनकी देखभाल भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल निधि। और हमने देखा है कि जिस घर में माता पिता जैसे दादा हैं दादी हैं, उनकी हंसी गूंजती है, वहाँ रिश्तों में अपनापन और पूरा परिवार बड़ा ही सुकून से जीते हैं लोग, क्योंकि ये वो धरोहर हैं जिनके अनुभव में बीते समय की सीख और कुछ खट्टे मीठे अनुभव में बीते समय की वो भी सीख मिलती है, और अपनी बातों में आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन छिपा होता है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो निधि कई बार आप देखेंगे कि वो किससे कहानियों में कुछ बातों को ऐसे समझा जाते हैं कि हमें जब बाद में पता चलता है तो लगता है कि ये बात हमें उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं है ना।
0: कहानियों से बेहतर और कोई
1: हाँ
0: माध्यम हो भी नहीं सकता। और
1: बिल्कुल
0: नानी दादी की कहानियां, ये तो भाई हम भी सुनकर बड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय किया है, हमारे जो बुजुर्ग हैं। तो अब जो उन्होंने किया हमारे लिए, उस वक्त हो सकता है कि सुविधाओं की भी कुछ कमी रही
1: बिल्कुल
0: होगी, फिर भी उन्होंने पूरे परिवार को संभाला, संस्कार दिए, पूरे परिवार को सहेज के रखा। और कितनी सारी चीजें हैं, जैसे अब देख लो पर्व त्योहार है,
1: आने वाले हैं। बिल्कुल
0: हाँ, उसके पीछे का जो संदेश जो है, मान्यताएं जो है, वो हम इन्हीं से तो सीखते हैं।
1: बिल्कुल निधि, आपने यादें ताजा कर दी। मुझे याद है कि जब दशहरा आने वाला होता था तो दादी, खास करके अगर दादी के घर में है, तो सारी बातों को वो कहानियों के माध्यम से ऐसे समझा देती। और हमारे घर में जितने बच्चे होते थे, चाहे अगर बुआ के बच्चे आए या हमारे चाचा के आए, सब लोग हम लोग साथ बैठकर सुनते थे, और कहीं ना कहीं हम जिद भी करते थे। कभी कभी ख्वाहिश होती थी कि हम ये लेंगे वो लेंगे, तो ऐसा होता था।
0: हाँ,
1: सखियों, जब हम छोटे थे तो कहानियां बहुत अच्छी लगती थी निधि। जैसा कि हमने अभी कहा, उन कहानियों में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता था, बल्कि नैतिक शिक्षा, ज्ञान, जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते थे, जो
0: और
1: आज
0: वही
1: हमें
0: कहानी, उसी उन्हीं कहानियों को हम दोहराते हैं और
1: दोहराते
0: छोटे
1: हैं
0: बच्चों को
1: आजकल।
0: बताते भी
1: बिल्कुल
0: हैं। तो बहनों, किसी ने कहा है कि झुक के मिलते हैं जब बुजुर्गों से हमारे बच्चे, तो फूल पर बाग की मिट्टी का असर होता है। और एक खुशहाल परिवार की पहचान है हमारी ये तीसरी पीढ़ी, वो घर ही क्या जहाँ इनकी छाया ना हो, और जीवन के हर पग पर हमारे ये रक्षक हैं।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात निधि। इसलिए इनका मान सम्मान, इनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बुनियाद सकुशल हो तो घर का उस घर को कोई भी हिला नहीं सकता। और हम ये भी कहते हैं कि भाई, वो बच्चे भी बहुत खुश नसीब हैं जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, उसमें पलते हैं बढ़ते हैं। हमेशा बच्चों को यह बताइए कि आज हम उनके आशीर्वाद से ही हैं। हमारे जीवन का यह फर्ज है कि इनके चेहरे पर खुशी को हम सजाकर यानी कि बरकरार रखें।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात कही शिल्पी तुमने। और बहनों, एक बात याद ये भी रखना चाहिए कि हमारे माता-पिता भी अब शारीरिक रूप से वैसे नहीं हैं जैसे एक समय में हुआ करते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ शारीरिक सेवा की ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जो सहारा है उसके भी जरूरत है।
1: बिल्कुल, क्योंकि निधि कई बार ऐसा होता है ना, हम आसपास देखते हैं तो लगता है कि इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए, है ना। दवा है, टाइम पे भोजन है, रात में सोने समय हम बिस्तर ठीक कर दिए, मसहरी लगा दिए, लेकिन ऐसे में उपेक्षित हो जाते हैं हमारे बुजुर्ग। अगर हम उनसे बातें नहीं करें, उन्हें अगर हम कुछ पर्व त्योहार आने वाले हैं तो उनसे हम कुछ सलाह ना लें, तो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जो जैसा कि हमने कहा कि भावनात्मक रूप से उन्हें सहारे की जरूरत तो है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात बताई, और इनका जीवन अनुभव से भरा होता है बहनों, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए इस वट वृक्ष की जितनी सेवा की जाए, सम्मान की जाए, वो बहुत बेहतर है हमारे जिंदगी के लिए, और इनकी छाया में पूरा घर जो है परिवार फलेगा,
1: बिल्कुल।
0: आगे बढ़ेगा।
1: और इस जीवन संध्या में उन्हें हमने हमेशा कहते हैं, हमके प्यार मान तथा उनकी इच्छा का भी ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे निधि, देखिए अब दशहरा आने वाला है, तो उनकी भी हम पसंद को पूछ सकते हैं। हमारे रीति रिवाज संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ पकवान ही हमारे यहाँ बनने वाला है, तो अगर हम छोटी छोटी उनकी बात पूछ लें, शायद उन्हें कुछ मन हो ऐसा, तो इस तरह से कुछ कुछ बातें हैं जो पूछने से उन्हें शायद खुशी मिलेगी।
0: हाँ, तो अब बहनें भी हमें लगता है कि अपनी पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा करेंगी ज़रूर,
1: बिल्कुल निधि,
0: है ना, क्योंकि हम सब तो उसी दौर से गुजरे हैं। और अब शिल्पी दूसरा गाना सुना दे बहनों को।

0: तो शिल्पी आज हवाएं तो खैर नहीं चल रही हैं, लेकिन हमने गाना ऐसा सुनवा दिया बहनों को, शायद हवाएं चलने लगे।
1: और इसलिए कि कभी कभी ना हवाओं के साथ साथ धूप की भी जरूरत होती है।
0: बहुत अच्छी बात कही शिल्पी
1: है ना। और हम व्यस्त जीवन में अपने लिए दोनों जरूरत है, अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए धूप जरूरत है तो हवा की जरूरत है। भाई आज हम बात कर लेते हैं इसी पे कि हमारे जो दिनचर्या है भागदौड़ वाली है।
0: हाँ तो गृहिणी भी है तो वो 2400 घंटा थी, हम व्यस्त रहते हैं, सब काम तो हम करते ही हैं, लेकिन इसमें स्वास्थ्य को हम अनदेखा कर देते हैं कभी कभी, जाने में अनजाने में, और हमें वक्त भी नहीं मिल पाता।
1: लेकिन सखियों हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तभी हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे, क्योंकि ये ठीक है सब लोग हैं, बच्चे हैं, भेजना है, आखिर भेजेगा कौन, है ना।
0: हाँ और सुबह की शुरुआत तो हम सभी कहते हैं हमारे सबके लिए से शुरू करें, योगा करें, सुबह की शुरुआत ऐसी ही होनी।
1: बार हम तो इसका भी एक उपाय है निधि का, अगर हम सुबह उठें तो हमारे लिए आधे घंटे का समय निकालना मुश्किल नहीं होगा।
0: इसके लिए आपको सही समय पर सोना और जागना बहुत
1: दोनों का
0: जरूरी
1: है।
0: और उसके साथ ये भी बात है कि आहार आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि इतना हल्का होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको उससे ऊर्जा तो मिले लेकिन सुबह में आप बिल्कुल भारीपन महसूस ना करें।
1: बिल्कुल है ना।
0: तो उसके लिए आपको सही समय पर भी भोजन करना जरूरी है,
1: यानी कि व्यस्तता के कारण भोजन में लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। बहनों संतुलित और पौष्टिक आहार को आप खाएं, सुबह सुबह दूध है, दही है, हरी सब्जियां हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि मौसमी फल। कई बार ऐसा मन में होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत महंगे फल को खा रहे हैं, लेकिन बहनों ऐसा नहीं है, जिस मौसम में जो फल मिलता है उसको खाएं। और आजकल तो घर में हर घर ये प्रचलन है कि साबुत अनाज को आप अपने भोजन में जरूर लें।
0: बिल्कुल, जिसे स्प्राउट्स के नाम से जानते हैं आमतौर पर, कि उसे भिगो कर हम रखें, उसका सलाद भी बना सकते हैं और अलग अलग मसाले डालकर आप खा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प है हमारे भोजन में। और स्वास्थ्य को बिल्कुल अनदेखा ना करें, और अगर कोई आपको समस्या हो डॉक्टर, अब थोड़ा वक्त और है शिल्पी हमारे पास,
1: और इसी बीच में मैं बात और हो भी रहा है तो आप संगीत सुने, तो इसलिए आइए लेकर आए हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

0: और इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम में अब हम दो सखियां हैं, मैं निधि और निधि हमारे साथ है, मैं शिल्पी।
1: और वक्त हो गया है बहनों से विदा लेने का शिल्पी, तो चलते चलते बता दें बहनों को कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। और बहनों अभी के लिए दें इजाजत, निधि और
0: शिल्पी को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी हम सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ आपकी सखी थी निधि और शिल्पी। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। आज हम सुनेंगे मगही भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं सिसोदिनी सिंह और इनके साथी।

अभी हम सुन रहे थे आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। आज हम सुन रहे थे मगही भाषा में लोकगीत। कलाकार थी सिसोदिनी सिंह और उनकी साथी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों का ही कार्यक्रम लोक रंग। आइए आपको सुनवाते हैं खड़िया भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं इग्रासियस केरकट्टा और इनके साथी।

अभी हम सुन रहे थे इग्नासियस केरकेट्टा और साथियों से खड़िया भाषा में लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली केंद्र पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई सदी समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सत्यन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by three female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बढ़ी राजनीतिक तकरार, भाजपा ने एसआईआर को बताया जरूरी, झामुमो ने प्रक्रिया पर फिर उठाए सवाल। झारखंड में खुलेंगे नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हर जिले में मॉडल आईटीआई और प्रखंडों में मिनी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की योजना से बढ़ेंगे अवसर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दी स्वीकृति। 9 अक्टूबर को रांची में होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मुकाबले के लिए कल से शुरू होगी टिकटों की बिक्री, 18,000 रूपये तक रखी गई है कीमत। और रांची पहुंचने पर एशियन गेम्स की स्वर्ण विजेता हॉकी टीम की खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, कप्तान सलीमा टेटे ने कहा अब ओलंपिक में पदक जीतना लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है।
1: ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है ये सब बांग्लादेशी को उसी तरह से प्रोटेक्ट कर। एसआईआर में नोटिस तो मुझे भी मिला, खोजेंगे ना कि मैं 2002 में कहाँ वोटर था, 2003 में कहाँ वोटर था, मेरी उम्र जो है 56-57 साल हो गई, 18 साल वोटर का उम्र है, खोजेगा ना चुनाव आयोग। आप कागज नहीं देंगे, बिना कागज के रहेंगे? आधार मत बनवाइए, पैन कार्ड मत बनवाइए, बैंक अकाउंट मत खोलिए। आप कहिए हम कोई कागज नहीं देंगे, हम बिना कागज के ही इस देश में रहना चाहते।
0: वहीं रांची में झामुमो से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।
2: चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का अस्त्र आप उपयोग कर रहे हैं, तो जहां गड़बड़ी होगी वहां जेएनजी या तमाम पार्टियां तो करेंगी विरोध, और उसी के तहत ही विरोध हो रहा है। आप उनकी बात मान लीजिए, सिर्फ आपको ज्ञानेश कुमार जी को ही हटाना है। एक टीएम सेशन थे जिनका मिसाल आज भी

0: को देते हैं कि उन्होंने जो ईमानदारी का और ट्रांसपेरेंसी का जो एक मिसाल कायम किया, आप वैसे लोगों को रखे ना।
1: झारखंड में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय के निर्देश के बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक संस्थान या संबंधित पक्ष 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इधर झारखंड सरकार राज्य के हर जिले में मॉडल आईटीआई खोलने और मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक व हाईटेक बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। इससे संबंधित प्रखंडों के लोगों को स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक माहौल के अनुरूप नियामक व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। श्री गौबा ने यह बात नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के दौरान विघटन के दौर में नियामक निगरानी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद वियतनाम में सड़क दुर्घटना में मारे गए योग प्रशिक्षक का शव आज रांची के किशोरगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि मृतक के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जा रही है।
2: वियतनाम में योगा टीचर का जो डेथ हुई थी रांची वासी, तो झारखंड सरकार हमारे राज्य सरकार उनको 5 लाख रुपए दे रही है। उसका पूरा पेपर वर्क हम लोगों ने कम्प्लीट किया है और उनको वो 5 लाख रुपए भी दिए जाए।
1: इधर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी आज शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में, जिसने देश में कर प्रणाली को सरल और एकीकृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन GST का था और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
1: इधर हजारीबाग के व्यापारियों ने कारोबार में GST से हुए लाभ के अनुभव साझा किए।
4: सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने एक राष्ट्र एक कर प्रणाली को इस देश में लागू किया। इसके लिए मैं अपने समाज की ओर से, व्यापारी संघ की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा लाभ हम लोग को होता है कि वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जो था वो तीनों खत्म हो गया और टैक्स प्रणाली साधारण बनाई गई।
5: मोदी जी का यह कदम बहुत ही अच्छा है, सराहनीय बोला जा सकता है, दूरदृष्टि वाला बोला जा सकता है। भाई सरकार को तो टैक्स मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो विकास का कार्य कैसे होगा।
1: रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल

0: में छापेमारी कर 6 युवतियों और 8 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना के आधार पर की गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,34,000 रुपये प्रति किलो है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समयानुसार 2:30 बजे शुरू होगा। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग का रांची पहुंचने पर आज जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि पूरी टीम ने स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य तय किया था।
1: हम बहुत खुश हैं और हम चाहते थे कि इस बार हमें गोल्ड लेके आना है और पूरी टीम ने हमने यही डिसाइड किया था कि इस बार हमें कुछ भी हाल से हमें फाइट करना है, हमें पैर तोड़वाना है या कुछ भी करना है, बट हमें इस बार गोल्ड लेके आना है और जो हमने डिसाइड किया था वो हमने किया है। चाइना बहुत अच्छी टीम है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। हमारा फ्यूचर ये कि अभी हमारा एले क्वालिफाई डायरेक्ट हो गए और डेफिनेटली हम इस बार मेडल ले गएंगे।
0: रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मुकाबले के लिए कल से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। टिकट मूल्य 1600 रुपये से शुरू हैं। टिकट का अधिकतम मूल्य 18,000 रुपये है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बढ़ी राजनीतिक तकरार, भाजपा ने एसआईआर को बताया जरूरी, झामुमो ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल। झारखंड में खुलेंगे नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हर जिले में मॉडल आईटीआई और प्रखंडों में मिनी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की योजना से बढ़ेंगे अवसर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दी स्वीकृति। 9 अक्टूबर को रांची में होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मुकाबले के लिए कल से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। 18,000 रुपये तक रखी गई है कीमत। और रांची पहुंचने पर एशियन गेम्स की स्वर्ण विजेता हॉकी टीम की खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, कप्तान सलीमा टेटे ने कहा अब ओलंपिक में पदक जीतना लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं सिप्रा बोस।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह। इनकी आवाज में हम सुनेंगे कुछ गजल। सबसे पहले आइए सुनते हैं भूपेंद्र की आवाज में ये गजल, बोल हैं अपने जज्बात के।

अभी हम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे मिड डे न्यूज और ठीक इसके बाद हम सुनेंगे दोपहर समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र पर।

0: Singapore's the union minister said that this landmark success has been made possible by the nearly decade-long unwavering dedication of India's scientists, researchers and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards conservation program. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rejinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sadar. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़ राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
4: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
5: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
4: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
7: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
8: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा हमले की पुष्टि की। हुती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य, 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। किलोहर्ट्ज पर थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।

ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहले किरण में चिड़ियों की चहक हो। जब भी खोले आप अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की चमक हो। आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। मैं हूं आपकी दोस्त सुप्रीता। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से खूबसूरत सा गाना। आवाज है कुमार शानू की। इस गाने के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अगला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म मैंने प्यार किया से। एसपी बालासुब्रमण्यन की आवाज है, इस गाने के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में आइए सुनते हैं अगला गाना फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसे। इस गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और जतिन ललित ने इसकी धुन बनाई है।

कार्यक्रम में चलते चलते आइए अब अगला और आखिरी गाना आपके लिए हमने लिया है। समीर के लिखे बोल हैं जिसे आवाजें दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फिल्म है दिलवाले।

0: अभी हम सुन रहे थे जय भारती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं है राहुल शर्मा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री दुबे को इसके अलावा वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का भी सदस्य बनाया गया है। निशिकांत दुबे लगातार दूसरी बार आईटी समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनियमितता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में हालिया विभिन्न प्रकरणों का जिक्र करते हुए श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि सीएम सजायाफ्ता होते हैं तो भविष्य में चुनाव लड़ने की पात्रता भी खतरे में पड़ जाती है। सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों को नसीहत देते हुए श्री मरांडी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि सत्ता किसी व्यक्ति विशेष के पास हमेशा नहीं रहती। विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत की ओर से रांची में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के अग्रणी नायक अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी का समारोह मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संपर्क प्रमुख अमरीश जी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के संघर्ष की जीत का प्रतीक है।
2: विश्व हिंदू परिषद और जितने भी अपने विचार परिवार के संगठन हैं सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं।
1: एसआईआर के तहत दावा आपत्ति अवधि के दौरान मिले आवेदनों के डिजिटाइजेशन पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का फोकस है। चार तरह के प्रपत्रों का तेज गति से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने कल भी फॉर्म संख्या 6 के 4000 से अधिक आवेदन का डिजिटाइजेशन किया। फॉर्म 8 के करीब 3000 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर को एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार की कोशिशों से वियतनाम से योग शिक्षक राजा वर्मा का पार्थिव शरीर रांची स्थित किशोरगंज पहुंचा। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग उमड़ पड़े। योग शिक्षक राजा वर्मा का पिछले दिनों वियतनाम में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने भी स्वर्गीय वर्मा के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदना जताई। एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी के दोनों फॉर्मेट में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में भारत ने झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। सलीमा टेटे के अलावा भारतीय टीम में झारखंड की ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग के रांची लौटने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर टीम की सदस्य निक्की प्रधान ने कहा कि अगला लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना है।
3: पिछले साल हमने एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ऑलरेडी मेरे पास सिल्वर मेडल भी था, तो मेरे पास गोल्ड मेडल नहीं था। तो इस बार 6-7 महीने से टीम काफी तैयारी की थी, सब लोग एक दूसरे को, जिसके कारण हमारी मेडल लास्ट ईयर मिस हुआ था, उसके लिए हम लोग ने काफी काम किया। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे।

0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में दूसरा T20 क्रिकेट मैच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री कल से शुरू हो रही है। जेएससीए ने बताया है कि 5 और 6 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकटों की बिक्री होगी। एक घंटे का लंच ब्रेक भी होगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 टिकट मिल सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी टिकटों की बिक्री होगी। 1600 रुपए का सबसे सस्ता टिकट होगा, जबकि 18000 रुपए का सबसे महंगा टिकट होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म क्या कहना से खूबसूरत सगाना कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरण की आवाजों में। मजहूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

फिल्म सगींत में आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में डर फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और शिव हरि ने इस गाने की धुन बनाई है।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में आइए सुनते हैं अगला गाना फिल्म एजेंट विनोद का। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और इस गाने की धुन बनाई है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

0: फिल्म संगीत में वक्त है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनंदन फिल्म संगीत में। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आजा नचले से ये गाना। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजें हैं, जयदीप शाहनी के बोल हैं और इस गाने की धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।
1: चल होए, चल, जरा शोर हुआ।

अभी हमने आपको सुनवाया पीके फिल्म का ये गाना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थी। अमिताभ वर्मा ने बोल लिखे थे और इस गाने की धुन बनाई थी शांतनु मोइत्रा ने। फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गाना लीजिए सुनिए फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। चिन्मय और गोपी सुंदर की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: जी का प्रसारण। आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा का 17वां संस्करण।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुविमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम को दिशा दी है और जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बल और गति प्रदान की है। आज जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में हमारा विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे विविध और विस्तृत देश को आपस में जोड़ने, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने और देश के हर क्षेत्र हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए मूलभूत ढांचे के विकास में हुई तेज प्रगति के लिए पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल चिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार।
2: आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं पीएम गति शक्ति पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: सड़क, रेल, बंदरगाह या हवाई अड्डा अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना अलग अलग और आपसी समन्वय के बिना बनाई जाए तो परियोजनाओं के बीच तालमेल की कमी और कनेक्टिविटी में अंतर जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करना और सड़क, रेल, बंदरगाह, जल मार्ग, बिजली, दूर संचार तथा अन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत जियो स्पेशल डेटा, जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को किसी परियोजना की योजना बनाते समय मौजूदा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और संभावित बाधाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। अगस्त 2026 तक 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका था और 3291 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है। इसका एक अहम हिस्सा है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG या केंद्र सरकार की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है ताकि योजना के स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, विभिन्न परियोजनाओं के बीच तालमेल और डेटा आधारित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। रेलवे में भी पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों का इस्तेमाल परियोजना नियोजन में किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे की 300 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिनकी कुल लंबाई लगभग 13,808 किलोमीटर थी। इनमें 51 नई रेल लाइंस, 17 गेज कन्वर्जन और 232 डबलिंग परियोजनाएं शामिल थी। इस तरह पीएम गति शक्ति का मूल विचार है अलग अलग परियोजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को एक साथ देखकर योजना बनाना।
2: ये कहें कि प्रेरणात्मक अवसर है और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिस तरह से वहां पर समृद्धि आई वो सबके सामने सर्वविदित है और उसी लय में जिस तरह से उन्होंने मूलभूत ढांचे के विकास को हमारे देश में गति दी है पिछले 12 वर्षों में, उसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे आंकते हैं सुविमल जी?
3: आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सार्वजनिक जीवन में 25 साल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारे देश को जोड़ने का जो प्रयास किया हुआ है और विशेषकर मैं समझता हूँ कि उत्तर पूर्व भारत में जो बदलाव आया है पिछले 12 साल में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पूर्व में एक हताश होते थे कि हम जो मेन स्ट्रीम शब्द यूज होता है इस्तेमाल जो होता है उसमें वो जुड़े नहीं है, वो किसी तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास रहे सारे उत्तर पूर्व में सड़क से जोड़ना, हवाई अड्डों नया बनाना, रेलवे को आगे ले जाना, कितने सारे राज्यों में रेलवे

0: नेटवर्क के ही के हिसाबों में। तो मैं समझता हूं कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ गवर्नेंस होता है, इसका बड़ा प्रतीक है और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल में यह दर्शाता है कि लोगों को जोड़ने के लिए आज जो हम बोलते हैं कि कनेक्टिविटी का महत्व बड़ा भूमिका होता है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से 2014 में अगर आप जाते हैं तो देखते थे कि क्वालिटी जो बैंडविड्थ का भी नॉर्थ ईस्ट में मिलता था, आज हर जगह अरुणाचल जाइए या त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, कहीं भी जाइए आप कर सकते हैं। मैंने तो एक बार बजट का आधा घंटा पूरा डिबेट पहाड़ के ऊपर बैठ के नेटवर्क से यूज किया। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व भारत में बहुत सारे बदलाव लाए और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कामयाबी रहा उत्तर पूर्व को कम समय में जोड़ने के लिए।
1: अनिल जी आपके पास आते हैं, जैसा सुबिमल जी ने कहा कि कनेक्टिविटी को बहुत बल दिया है प्रेजेंट सरकार ने और खासकर ऐसे एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो पहले मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े माने जाते थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया है। अगर हम जो पैन इंडिया जो स्कीम लाई गई कनेक्टिविटी के लिए, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रहा है सरकार का जिसमें इतने सारे विभाग, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका परम उद्देश्य आप क्या मानते हैं, इसको कितना क्रांतिकारी मानते हैं?
2: सबसे पहले मेरा श्रोतागण को नमस्कार। और जहां तक पीएम गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट पिछले 5-4 साल से शुरू हुआ है, तो इसमें देखा है कि एक क्रांति है। इसमें क्या है कि अभी तक सब अलग अलग साइलोज में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था और हमारे देश में हाईवेज हमने बनाए हैं और अच्छे हाईवे बनाए हैं, लेकिन अगर हम उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो भी हमारी एफिशिएंसी उसकी नहीं मिलेगी। अब हमारा देश का जो अगर देखा जाएगा, अब तो नहीं रहा, पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में होता था और वो 14% से के अबव था, लेकिन आज वो घटकर जो हर साल 2% से ज्यादा घट रहा है, इससे और भी ज्यादा घटेगा। जो इसका टारगेट है वो 6% तक लाना है, तो 6% तक लाने के लिए हमारे को हाईवेज जो थे वो स्टैटिक थे, अब वो डायनेमिक बने। डायनेमिक में का मतलब हुआ कि उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का इंटीग्रेशन किया, यानी कि अगर हमारी एक वायबिलिटी, सपोज हमारे को 2000 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम अलग अलग ट्रक्स लोड को लेके जाएंगे, अभी भी हमारा जो ट्रक का लोड है वो 80% ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देश में है, लेकिन जिस टाइम ये मल्टी मॉडलर हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो 20% जो गुड्स का है तो वो शेयर बढ़कर 40% हो जाए, और 40% होते ही हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हो सकता है अभी 1 या 2 साल में हम 9% से कम भी ले आएंगे। और इसमें हमारे को जो भी उसमें हाईवेज की एमिनिटीज बनाना है, इंटरचेंज पॉइंट बनाना है, हमारे को उसकी कनेक्टिविटी के साथ में जीआईएस की जरूरत है, हमारे को टेली कम्युनिकेशन की जरूरत है, और जो हमारे को एक ड्राइवर्स का जैसे पूल की जरूरत है, और लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो इस सबका इंटीग्रेटेड हाईवेज की एमिनिटीज और फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये पूरे देश में जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में हमारा देश, मैं आपको आज इस चैनल के थ्रू एक उम्मीद कर सकता हूँ और उम्मीद के साथ में मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को जो पीएम गति शक्ति है, वर्ल्ड लर्न करेगा, सीखेगा।
1: सुबिमल जी आप क्या कहना चाहेंगे, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है जिसमें हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको, इनलैंड वाटरवेज, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है और ताकि बिल्कुल निर्बाध कनेक्टिविटी हो लोगों के लिए, गुड्स के लिए, ये किस तरह से आपको ये अप्रोच जरूरी लगता है अभी की जरूरतों के लिए और हमारे इकोनॉमी के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
0: सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रयास रहे हैं, और अभी अनिल साहब ने भी ये बताया कि एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके जितने क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी उनको जोड़ा जा रहा है, और किस तरीके से हम ये जो नेटवर्क्स है इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको किस तरीके से संतुलित रूप से अपने जो रिसोर्सेस भी रहते उसको भी हम उसी हिसाब से खर्च करें। तो हम अगर देखें तो इससे समय भी कम लगेगा प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा भी कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी जिस मात्रा में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे देश में ली है, अगर आप देखें गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम में करीब 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया गया था और करीब 19 लाख करोड़ का जो प्रावधान था उनके लिए, उसमें से करीब 250 ऑलरेडी सैंक्शनड है और 200 इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब एक कॉमन अप्रोच आप लेते हैं और जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये देश के लिए बहुत फायदा होता है। और यही प्रयास से आज जब टेक्नोलॉजी हर तरीका हर क्षेत्र में मिल रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी, कनेक्टिविटी में भी, लास्ट माइल में भी, और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है कनेक्टिविटी का, तो इस सारे जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कामयाबी है।
1: एक और एस्पेक्ट है जो हमने इन 12 वर्षों में देखा है कि बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुए हैं और बहुत दुर्गम जगहों पर इस्टेब्लिश हुए हैं। जो एक प्राइम एग्जांपल है अटल टनल, अटल टनल को अनिल जी अगर हम आपके पास आए, किस तरह से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? ये पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है 10,000 फीट से ऊपर, और जिस तरह का ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
2: मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम चाहे वो हिमाचल से जाना होता था लद्दाख को, और केलोंग जैसे हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है जस्ट इसके बाद जो अटल टनल के बाद शुरू होता है, आज से करीबन 35-40 साल पहले सर्विस इंजीनियर था हिमाचल प्रदेश में, और मुझे पता था कि मनाली से केलोंग जाने में पूरा एक दिन लगता था, और एक दिन लगने की वजह से वहाँ का जो सब्जियां थी, वहाँ का जो और रॉ मटेरियल जो सप्लाईज होनी होती थी, तो वो वहाँ पर पहुंच नहीं पाती थी और उसमें लैंडस्लाइड होता था। और जो अब जब से ये सोलंग नाला से हमारी कनेक्टिविटी बनी है तो आज 3 घंटे में पहुंचते हैं, यानी कि जो 12 घंटे का जो ट्रेवल था वो 9 घंटे हमारे बच गए, और कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतना कम हुआ। और फिर क्या था कि आप मनाली के बाद आगे कोई टूरिज्म नहीं था, आज अटल टनल ने एक ऐसा टूरिज्म का रास्ता खोला है कि जो लद्दाख जो ऐसा लगता था कि आप बाय रोड पता नहीं कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, सेफ पहुंचेंगे या नहीं, और आज लद्दाख की कनेक्टिविटी हमारी इतनी आसान हो गई है कि कुछ लगता ही नहीं है कितनी जल्दी वहां पहुंच गए हैं। और डेवलपमेंट उस एरिया का, केलोंग जो बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र था, आज वहां पर वी आर फाइंडिंग बेटर होटल देन मनाली। तो ये जो डेवलपमेंट आ रहा है,
1: 6 महीने के लिए बंद हो जाता था रोहतांग पास, उसको ओवरकम किया है और कनेक्टिविटी निर्बाध बनी।
2: यस, अब रोहतांग पास तो बाईपास हो चुका है, तो नीचे से टनल जा रही है अब जिसको रोहतांग जाना है जाए, अदरवाइज पहले तो इट वाज फोर्सिबली गोइंग ओवर देयर, तो वो सारी चीजें बनते हैं।
1: तो सुबिमल जी, सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सेला टनल जो 2024 में शुरू हुई, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं वहाँ के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और वहाँ की इकोनॉमी के लिए और वहाँ के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेला टनल पृथ्वी की सबसे लंबी बाइलेन टनल है और ये ऑल वेदर रोड है तवांग, तो हमारा तवांग के साथ जो कनेक्टिविटी है अगर सारे सीजन्स में अवेलेबल है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात ये है कि एक अरुणाचल में ये दो जो ट्विन टनल्स है, ये सेला टनल एक एक किलोमीटर की है और एक 1.5 किलोमीटर की करीब, इससे थोड़ा ज्यादा है, 13,000 फीट ऑल्टीट्यूड में, इस तरीके का कैपेबिलिटी जो आज हमारे पास है और ऑल वेदर रोड बनाने का, तो अरुणाचल का कनेक्टिविटी, अरुणाचल का सिक्योरिटी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्व है। और आज साल भर लोग उससे आगे जा रहे, तवांग का एक टूरिस्ट वैल्यू भी है और सिक्योरिटी वैल्यू भी है, तो ये दोनों जो टूरिस्ट का इनफ्लो, हालांकि वेदर के हिसाब से कुछ सीजन्स होते हैं टूरिस्ट के, लेकिन साल भर में लोग का आना जाना है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाबी है, क्योंकि इससे और कई सारे उस तरफ और कनेक्टिविटी के लिए छोटे छोटे फीडर रोड्स ये जितने हो रहे वो भी एक्टिव होते जा रहे हैं, तो अरुणाचल के और बॉर्डर कनेक्टिविटी विशेषकर बहुत आगे बढ़ रहा है इससे।
1: इसके अलावा अभी आप जो थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह से पीएम डिवाइन जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स आए हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने 3,746 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, जिसमें से 2500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये पूरा जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इनलैंड वाटरवेज बढ़े हैं, इससे आपको लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ कहें कि मेन स्ट्रीम से जुड़ गया बल्कि एक ग्रोथ इंजन बनने का उसमें पोटेंशियल है पूरे भारत के लिए?
0: बिल्कुल बने रहे। आपने डोनर मिनिस्ट्री का जिक्र किया, केंद्रीय सरकार की 54 मिनिस्ट्री की मिनिमम 10% एक्सपेंडिचर

0: को नॉर्थ ईस्ट में करना होता है। और ये जो आपकी फंडिंग इनकी तरफ से गए तो हर क्षेत्र में हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हुए। दूसरी बात आते है कि ये जितने पैसा देते हैं तो उसका जो एक अकाउंटेबिलिटी होता है वो आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ये एक जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसका जो अकाउंटेबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है तो आगे का हिस्सा भी नहीं जाता है। तो डोनर मिनिस्ट्री का जो अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी कुछ कर रहा है, या नेरामेक जैसा संस्थान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास रहे कि एक्सपेंशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लाए तो हमारा जो रिसोर्स स्पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट में बहुत इम्प्रूव है। दूसरी बात है कि सड़क का जो निर्माण हुआ है अभी, या रेल का वहां जो निर्माण हुआ है, इस साल की मैं बता सकता हूं कि अभी 96% रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं। जब 2014 में सरकार आए थे प्रधानमंत्री की, तब नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवेज थे, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेन ब्रॉडगेज कन्वर्शन काम चल रहे थे, एक लमडिंग सिलचर का एक 196 किलोमीटर जैसे, वो 16 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी आने के साथ साथ एक साल में उसको कंप्लीट करके 2016 से वहां से ट्रेन जाता। उस कनेक्टिविटी के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारत की रेलवे नेटवर्क में जुड़ गए। दूसरी बात, अगर आप हाईवे की वो ले तो वहां सिर्फ 91,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन हुई, यानी कि 61% ग्रोथ रहे है इन कई सालों में। और सड़क की क्वालिटी भी बहुत अच्छा। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत घूमते रहता हूँ तो मैं कुछ कुछ सड़क में जब जाते लगते है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाफलोंग सिलचर जो सिर्फ 100 किलोमीटर की रोड है, आज पिछले 20 साल से अब 6 घंटा से कम में उससे जा नहीं सकते। कुछ स्ट्रेचेस ऐसे खराब थे, पिछले 2 महीना से आप उस स्ट्रेच को 1.5 घंटा में क्रॉस कर रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ रहा है
1: आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, फार्मर्स के लिए,
0: इसीलिए
1: टूरिज्म के लिए।
0: हाँ, बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स नॉर्थ ईस्ट में निकल के आ रहे हैं इसी की कनेक्टिविटी करके, क्योंकि वो गांव से हाईवे तक आप आ रहे हैं और इसके बाद आगे मूवमेंट कर रहा है और आगे अपना प्रोड्यूस कहीं बेच के या कहीं जमा देके अगर वापस फिर सेम डे में जा सकता है, तो उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन की तरह होता है, मोटिवेशन। बहुत सारे नए फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू हुए हैं, बिटलनाट के लोकल फार्मिंग, बंबू की लॉट ऑफ नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं। तो
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जन सेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर तक। नई दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल शिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। और अब अनिल जी, जैसा भी सुविमल जी जिक्र कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक किया है इस सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो शुरू हो गए थे लेकिन वो लंबित थे। इवन अटल टनल की जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले उसका 300 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2040 तक जाकर वो समाप्त होती, और अब इन्होंने 1400 मीटर्स पर ईयर के गति से उसको बनाकर 2020 में जो कंप्लीट किया। आपको लगता है कि ये फास्ट ट्रैकिंग एंड टाइमली डिलीवरी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है सरकार का?
2: जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो पहले प्रोजेक्ट तो ये पहले का ही था
1: जी,
2: मुझे लग रहा है कि ये 2005 या 6 से ये शुरू हो चुका था, उसे भी पल के पहले। तो उस टाइम में एक जो एक मोटिवेशन, एक ड्राइव, जो एक एंथुसियाज्म हमारे जो वर्कफोर्स में होने की जरूरत थी वो नहीं था। अभी आपने हाफलोंग की बात की, जैसे नॉर्थ ईस्ट में गया तो मुझे बताया गया कि आप उस स्ट्रेच से ना जाएं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस ये वजह थी। और इसी तरह से जो और दूसरे हमारे प्रोजेक्ट से, जैसे ये बोगीबिल ब्रिज बना, अब हमारे जो प्रोजेक्ट में गति जो आ रही है वो एक उस पावर के साथ में आ रही है कि सरकार की एक बैकिंग है, सरकार का एक मोटिवेशन है। वो जो मोटिवेशन है वो हमारे प्रोजेक्ट को बिफोर शेड्यूल लेके आ रहा है और हम वी आर क्रिएटिंग वंडर्स। तो ये सरकार का एक फर्क आया है और हमें देखने का महसूस होता है, क्योंकि मेरा जो पिछले 40 साल से ज्यादा मैं सरकार में काम करता रहा था और जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट चाहे वो मैं दिल्ली सरकार से और जो भारत सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट में थे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में मैं पहले से ही एसोसिएटेड था। अब एक जैसे हमारे सिलचर में एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि सुनील साहब ने

0: है कि वहाँ के लोगों को एक नया, जो चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी बन के आ रहे हैं, तो उसके साथ में एक हमारा वहां पर सिलचर में एक प्रोजेक्ट जो था वो इट वाज डेड प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट अभी पिछले 3 साल से आईकैट ने सिलचर में लिया है, एंड वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ ड्राइवर्स ओवर देयर, वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ टेक्नीशियंस सो दैट अवर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। तो ये जो एक फास्ट ट्रैक पर एक चेंज ओवर आया है, तो और वो सिलचर जो है इट विल ऑल्सो टेक केयर फॉर मिजोरम इवन मणिपुर असम के साथ में मेघालय, तो ये सबको मिला के वो जो एक हब बनेगा, तो वहां पर हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड जो विजन असम सरकार का और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि वहां का जो ड्राइवर्स है नॉट ओनली टू सर्व द कंट्री बट अब्रॉड ऑल्सो, तो ये वाले सारे चीजें जो एक चेंज पूरे एंथोजियाजम पूरे लोगों में आया है, तो इट इज वंडरफुल अनइमेजिनेबल।
1: जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और इस जोश की वजह से हम रेलवेज में भी देख रहे हैं कि ट्रैक रिन्यूअल और स्पीड एनहांसमेंट के लिए जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उसमें गति बहुत है। वंदे भारत ट्रेन ने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रेन ट्रैवल को। एक और चीज 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की भी बात है, और सुबिमल जी 1674 लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए गए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में, तो आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का असर भी हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं?
2: जी, जो प्रयास रहा कि एक मेक इन इंडिया और दूसरा इंडिजनाइजेशन, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जाए वहां भी ये प्रयास हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो सामान लगते हैं राउटर से लेके सब कुछ वो भी लोकल प्रोडक्ट, और रेलवे लोकोमोटिव्स, रेलवे कोचेस, रेलवे ट्रैक्स, हर में जो R&D की प्रयास होके लोकल प्रोडक्ट्स बन रहा है, लोकल सप्लाई चेन की जो नेटवर्क बनाया जा रहा है उससे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कम समय में और जिस तरीके से हमें रेलवे की एक्सपेंशन प्लान्स है। अब मैं फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट का भी उदाहरण देता हूं, इस साल नॉर्थ ईस्ट की बजट रेलवे की करीब 11,500 करोड़ रुपया के है, तो वहां जिस तरीके से आज ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, क्योंकि हर सारे राज्य में सबका डिमांड बढ़ते रहता है, नॉर्थ एक रेलवे एक पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट रहता है, और लोगों का कनेक्टिविटी जैसा कि मैंने त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम की बात की, तो इन सब के लिए अलग अलग ट्रेन जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक वाइब्रेंट सेक्टर रेलवेज में देखा जा रहा है, उसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी सप्लाई चेन में आ रहा है, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो जरूर हो रहा है, लेकिन और एक बड़ी बात है कि जो पहले नौजवान को मौका नहीं था और बहुत समय वो हथियार भी ले, आज वो नहीं हो रहा है, आज वो सामने आ रहा है
1: जी।
2: तो उससे समाज में भी एक बड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे।
1: तो इसी संदर्भ में जो नॉर्थ ईस्ट के अकॉर्ड्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं पिछले 12 वर्षों में, वो भी आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है?
2: बिल्कुल, हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब से आए तब से वन ट्रैक एफोर्ट से ये प्रयास रहा कि जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स है, देखिए उनके कुछ खौफ थे बहुत सालों से और कुछ लोग इसका फायदा भी उठाए है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उत्तर पूर्व को शांत रखना है, उत्तर पूर्व में उन्नति होना है, तो इनको फर्स्ट बिठा के बात करो क्या प्रॉब्लम है। और मैं कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब यहाँ आते थे बात करते थे, इसके बाद बड़ा खुश होके वापस जाते थे कि एक इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो रहे थे उससे और अलग उग्रवादी ग्रुप को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई सुनते। बट सबसे बड़े बात ये है कि जो इनको वादा किया जाता है कि आपका सेटलमेंट के हिसाब से आप रिहेबिलिटेशन कैडेट्स के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इनको ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये सारा वादा टाइम बाउंड मैनर में होता है और गृह मंत्री जी की वहां से ये मॉनिटर होता है, उससे एक कॉन्फिडेंस बहुत है। और अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे जो सेटलमेंट हुए, ये जो बड़ा सेटलमेंट हुए पिछले 2019 से, उनमें से बहुत लोग सार्वजनिक जीवन में भी आए, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं, तो ऐसे समाज की भी फायदा हुआ और जो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा वहां होता था वो आज वो नहीं है।
1: और अनिल जी, अगर हम आपने वाइब्रेंट वर्ड यूज किया अभी सुबिमल जी, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो शुरू किया वर्तमान सरकार ने, जिसके तहत जो सीमा के पास जो गांव है उनको पहले कहा जाता था लास्ट विलेज, अब कहते हैं कि ये फर्स्ट विलेज है, और जिस तरह का उनके लिए प्रोविजन है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे आईज और ईयर्स है, कितना बड़ी बात है ये एक एटीट्यूड चेंज में भी और वहां के विकास के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमारा जो आर्मी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इन्होंने एक स्कीम भी चलाई है कि जो बॉर्डर विलेज

0: है उनका टूरिज्म, तो उनके टूरिज्म में क्योंकि एक सेफ्टी की बात होती है, तो उसके लिए जब सेना हमारी उसको एक जिम्मेवारी लेती है, तो आज की तारीख में हम देखेंगे जो नई जनरेशन है, तो नई जनरेशन हमारी जो शिमला मनाली नहीं जा रहा, वो बॉर्डर विलेजेस में जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। वो उनके लिए आज वो जो जिसको आपने बताया ना कि फर्स्ट विलेज, तो फर्स्ट विलेज पे हर जो चाहे वो यंग या जेंजी जिसको हम बात कहें, तो जेंजी अपने आके ये बताता है कि जी मैं इस स्टेट के इस फर्स्ट विलेज पे गया, जो दूसरा वो कहता है अच्छा तुम वहां गए तो मैं और उससे एक्सट्रीम जगह पे जा रहा हूँ। तो ये एक जो कंपटीशन चला है, इससे अब वो जो जो उन विलेजेस में ना तो वहां पर पहले एजुकेशन थी, ना वहां पर कोई कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कोप था, या कोई किसी तरह की और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, अब वो टूरिज्म ने उनको इन हाउस अपॉर्चुनिटी दी है, एंड दे आर मेकिंग गुड सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर टाइप, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिस तरह के मोटल्स बनाते हैं, तो उन लोगों ने अपने हॉस्पिटलिटी अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है, और जिसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर विलेजेस है दे आर मोर टूरिज्म स्पॉट देन द सिटीज ऑफ देयर कैपिटल।
1: बिल्कुल। एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कनेक्टिविटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, जो हाईवेज में इतनी ज्यादा गति से बढ़े हैं, अगर हम देखें तो 61% के करीब बढ़ गए हैं जब 2014 और मार्च 2006 के बीच, अब लगभग 1,500 किलोमीटर के हमारे हाईवेज हैं, और 4 लेन जो हाईवेज हैं उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारतमाला जो परियोजना है, कैसे देखते हैं आप इस कहें कि जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर इतना जो बल दिया जा रहा है ताकि पूरा देश आपस में जुड़ पाए?
2: देखिए, ये रोड कनेक्टिविटी वाजपेयी जी की समय से एक मैं कहता हूँ बड़ा फोकस्ड एरिया रहा बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, और उस समय जितने हुए अभी मोदी सरकार के टाइम में ये और गति से ये काम हुआ है। और रोड की लेंथ के अलावा क्वालिटी ऑफ द रोड, जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आजकल गाड़ियां जो आ रहे हैं वो बड़ा उसमें भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो एक हाई स्पीड रोड्स आपको क्वालिटी रोड्स चाहिए होता है, लेन्स ज्यादा चाहिए होता है, वॉल्यूम बढ़ गए, उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हर कॉरिडोर्स जो बने हैं लोगों में एक गाड़ी लेके सड़क में जाना देश भर में, ये दिल्ली बॉम्बे में आजकल बहुत लोग चले जाते हैं चला के, एक तो थ्रिल फैक्टर होता है कि रोड सही है, लेकिन साथ साथ में जो बिजनेस भी होते हैं, जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बीच में, जो अलग अलग शहर या गांव में भी लोग जाते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंसी रहता है कि इस क्षेत्र में। और एक बात जो मैं देखता हूँ, जो रोड की हाईवेज की जो मेंटेनेंस है उसमें भी बहुत सुधार आया है। पहले अब जो जिस स्पीड में ये रेक्टिफिकेशन करेक्शन होते थे, आज वो बहुत जल्दी होते, तो मतलब ओवरऑल एक रोड क्षेत्र में और सेफ्टी को नजर में रखते हुए तो एक प्रयास रहे हैं।
1: सो इससे आपको लगता है कि जो नए नए इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सरकार हमेशा छोटे जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देती है, उनके लिए बहुत आसान होता है अपना सामान, या इवन फैक्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे, फैक्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स तक पहुंचे, सप्लायर्स तक पहुंचे, तो बहुत सहूलियत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी।
2: जहां रेल नहीं है या बहुत जगह जहां रेल भी है वहां रोड नेटवर्क्स की इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम देखे हैं कि और बहुत दूर दूरस्थ इलाके के लोग भी आज एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं और बाहर आके अपने सामान दे पा रहे हैं, या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए भी इनकी मटेरियल्स भी ये मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये टू वे ट्रैफिक रोड क्षेत्र में उन्नति के लिए हो रहे हैं।
1: एक और जो बहुत फ्लैगशिप कहें कि जो स्कीम रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है एस्टैब्लिशमेंट, वो है चेनाब अंजी खांड रेल लिंक, जो हिमालयाज में बना है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? विश्व का कह रहे हैं कि हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है चेनाब, कितना ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, हमारी सरकार के लिए।
0: जब से ये कनेक्टिविटी हमारा श्रीनगर के साथ में बना है, तो ये अब मात्र 4 घंटे का, कटरा से 4 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, जहां पर 12 घंटे लगते थे। और जब इसका जो आर्क ब्रिज को अगर आप देखेंगे, तो वहां जाके ऐसा लगता है जैसे मैं कि सपनों की दुनिया में, और उसके अंदर उसमें जब ट्रेन गुजरती है और जो उसके पैसेंजर्स जब वो सीनरी देखते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में, क्योंकि रेलवे लाइन दिखती तो नहीं है नीचे से, तो उसको वो दिखता है कि भी नीचे एक नदी बह रही है और आप हवा में है, क्योंकि ये एक सिग्नेचर ब्रिज की तरह से है। और नीचे उसका आर्क, आर्क तो हमारे को एरियल व्यू से दिखता है, बट वो ऐसा दिखता है कि मैं पहाड़ों में कहां पर पहुंचा हूं। ये ऐसा सीन तो ना

0: कोई सड़क है ना कुछ, आप पहाड़ के बीच में से और एक कुछ किलोमीटर का जो स्ट्रेच है तो उसके बीच में आप निकल के जा रहे हो, और तो वो देखने में ऐसा लगता है कि रमणीय है। हमेशा सेब के सीजन में श्रीनगर में बारिश आती थी जिसकी वजह से वहां पर काफी जो सड़ जाता था उनका मटेरियल, और अब वो जो है अगर वो बारिश आएगी बट वो जो गुड्स ट्रेन के थ्रू इसको फ्रेट को लेके आएंगे और तो हमारी सप्लाईज मेंटेन रहेगी और वहां के फार्मर्स को बारिश का नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा देश के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अंश है जो कि हमने इतने सालों में सोचा भी नहीं था, वो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी।
1: बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है, 260 किलोमीटर पर आवर तक की हवा को वो रिजिस्ट कर सकता है, और जो अंजी घाट ब्रिज है वो भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन में ही पड़ता है, वो अर्थक्वेक्स को विदस्टैंड कर सकता है, और वो भी फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। सो आपको लगता है कि ये सब हमारा एक शोकेस करते हैं भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक क्षमता है, एक बढ़ती मजबूती है पूरे विश्व में भी?
0: यस, अभी क्या था कि जो वंदे भारत के जो इस ब्रिज के सिबुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 10 दिन पहले, तो तब उन्होंने बताया था कि ये अर्थक्वेक के साथ में इसके ऊपर हमारा, बोले जी हमारे पास इतना इंतजाम है कि वो उस चीज के लिए भी हमने सेफ्टी का ध्यान रखा है, जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह और इंजीनियरिंग मार्वल्स, ये सारी चीजें हैं, तो हमारी सेफ्टी इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाई द पुलिस एंड डिफेंस फॉर दिस ब्रिज ऑल्सो अलॉन्ग विद द आइकॉनिक व्यू ऑफ दिस ब्रिज।
1: सुबिमल जी, आपके पास आते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि अब नॉर्थ ईस्ट पूरे हमारे देश से जुड़ गया है जिससे उनके व्यापार को फायदा होता है, आवाजाही में फायदा होता है, टूरिज्म को फायदा होता है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्रीज जो है उनके साथ भी एक जो जुड़ाव है वो अब संभव हो पा रहा है?
2: बिल्कुल हो पा रहा है, हो भी रहा है। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सरकार की है उस साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को अलग अलग इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। मेघालय की लकाडोंग हल्दी है, वहाँ की एक बड़ा स्पेशल हल्दी है, मिजोरम प्राथमिकता देके, फंडिंग देके, उसमें R&D करके लिंकेजेस कैसे आगे जा सकते, एक्सपोर्ट मार्केट हो सकते, इसमें बहुत प्रयास है। इसमें जो अब नए सारे एंटरप्रेन्योर्स ये सारे क्षेत्र में इन राज्यों से आ रहे हैं, इनके साथ साथ किस तरीके से राइस प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट, अभी के लिए गुवाहाटी और शिलोंग में पिछले हफ्ते बड़े एक डेलीगेशन आए थे वहां की यूनिवर्सिटीज की, तो इस तरीका से जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रयास हो रहे
1: हैं। क्या देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह से जुड़ाव का पूरा, जैसा आपने वर्ड यूज किया कि जोश के साथ जो ये कार्य चल रहा है, आपको लगता है कि यही नींव होगी विकसित भारत की, इसके बल पर ही हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक?
0: पहले उन लोगों का जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, तो उनको हमारा देश भारत एक अलग देश लगता था, और आज वो लोग प्राउडली लीड करते हैं कि ये देश हमारा है। तो ये वाला चीज का जो चेंज मैंने जो देखा है, तो यस आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी कैन यूनाइटेडली से विकसित भारत।
1: सुबिमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं ये कहूंगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयास रहे, इसके साथ साथ और सारे कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूर दराज इलाका में वो पेमेंट कर पा रहे, फिर साथ साथ में आपके आधार के जो ऑथेंटिकेशन, इनसे इन लोगों का बीच में एक एम्पावरमेंट की सेंस आती है कि हम भी सबके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। जो प्रयास रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से,
1: और गवर्नमेंट स्कीम्स भी वेलफेयर जो है बिल्कुल पहुंच पाया है
2: बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई मिडिलमैन नहीं है, और इसके साथ साथ जो लोगों का बीच में कॉन्फिडेंस आया है, मैं समझता हूँ ये जो 25 साल प्रधानमंत्री जी के गवर्नेंस इकोसिस्टम में रहे, उससे कोशिशें है हम सब एक साथ मिलकर कामयाबी करेंगे।
1: अनिल जी, सुबिमल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने प्रकाश डाला कि किन विभिन्न तरीकों से पूरा भारत अब आपस में जुड़ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चिकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। अभी हम सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: हिंद बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खूब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी। अच्छा बच्चों, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, पेड़ पर बैठी मैना को देखना या फिर पेड़ों पर फुदकती गिलहरी को निहारना, रंग बिरंगी तितलियों को देखना, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: पशु पक्षी हमारी दुनिया को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाते बच्चों, बल्कि प्रकृति के संतुलन में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन पशु पक्षियों को देखकर हमें खुशी मिलती है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं?
0: कई बार किसी चिड़िया को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करना, घोंसले को छेड़ना, किसी जानवर को पत्थर मारना या उसके पीछे भागना हमें खेल लग सकता है बच्चों, लेकिन जो हमारे लिए खेल है वो किसी बेजुबान जीव के लिए डर और दर्द हो सकता है।
1: इसलिए बच्चों, हमें ये सोचना चाहिए कि इन पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।
0: आखिर पशु पक्षी भी तो इस धरती पर हमारे साथ रहते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, प्यास लगती है, डर लगता है और उन्हें भी सुरक्षित रहने के लिए जगह चाहिए।
1: और शायद इसी बात को याद दिलाने के लिए 4 अक्टूबर का दिन बहुत खास है बच्चों। हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, लेकिन पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल एक दिन की नहीं है बच्चों, ये तो हमारे रोज के व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए और जिसकी शुरुआत हम अपने आसपास से कर सकते हैं।
0: जैसे गर्मी हो या सर्दी, अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में साफ पानी की एक कटोरी रखना बहुत आसान काम है बच्चों। पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना भी रखा जा सकता है और उस पानी को नियमित रूप से बदलना भी तो जरूरी है।
1: और अगर हमारे आसपास कोई घायल पशु या पक्षी दिखाई दे तो उसे छेड़ने या खुद इलाज करने की कोशिश करने के बजाय किसी बड़े व्यक्ति, पशु चिकित्सक या संबंधित संस्था से सहायता लेनी चाहिए।
0: और सबसे जरूरी बात, किसी जानवर को पत्थर मारना, पूंछ खींचना या उसके बच्चों को उठाकर परेशान करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
1: एक बात और, हमें सिर्फ पालतू जानवरों से ही प्यार नहीं करना चाहिए बच्चों, सड़क पे रहने वाले जानवर भी हमारे आसपास की दुनिया का हिस्सा हैं।
0: बिल्कुल, और प्यार का मतलब ये भी नहीं है बच्चों कि हर जानवर को घर ले आना है। प्यार का मतलब है उसे बिना वजह परेशान न करना, उसकी जरूरत को समझना और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना।
1: पालतू जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें घर लाना आसान है लेकिन उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। उचित भोजन, साफ पानी, स्वच्छ जगह और जरूरत पड़ने पर इलाज, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए,
0: क्योंकि जानवर कोई खिलौना नहीं, एक जीवित जिम्मेदारी है। किसी पक्षी का घोंसला दिखाई दे तो उसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, उसके अंडे या बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा घर होता है ना बच्चों, ठीक उसी तरह घोंसला भी किसी जीव का घर है।
1: और पशु पक्षियों की रक्षा की बात हो और प्रकृति की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पेड़ उनके घर हैं, जल स्रोत उनकी जरूरत है और प्रकृति उनके जीवन का आधार है।
0: इसलिए पेड़ काटने से बचना, पानी को गंदा न करना और प्लास्टिक कचरा खुले में ना फेंकना भी पशु पक्षियों की रक्षा करना है, यानी प्रकृति को सुरक्षित रखना, उनके घर को सुरक्षित रखना है।
1: हाँ बच्चों, हमें ये भी समझना होगा कि हर जीव को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हमें हर जानवर को छूना या अपने पास बुलाना जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी जीव को उसकी दूरी और आजादी देना ही उसके प्रति सच्चा सम्मान होता है।
0: तो बच्चों आइए आज 4 अक्टूबर को एक छोटा सा संकल्प लें, हम पशु पक्षियों को बेवजह परेशान नहीं करेंगे, उनके घोंसलों और रहने की जगह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
1: जरूरतमंद जीव को देखकर अनदेखा नहीं करेंगे बल्कि किसी बड़े की मदद से उचित सहायता दिलाने की कोशिश करेंगे और पेड़, पानी और अपने आसपास की प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे,
0: क्योंकि इस धरती पर हमारा जीवन जितना जरूरी है उतना ही दूसरे जीवों का भी, और शायद हमारी छोटी सी संवेदनशीलता किसी बेजुबान के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है।
1: और जो अपनी बात कह नहीं सकते, उनके प्रति हमारा व्यवहार ही हमारी संवेदनशीलता की पहचान है बच्चों।
0: बिल्कुल, और अपनी बात कह पाना भी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। कभी खुशियां बांटनी हो, किसी का हाल पूछना हो या दूर बैठे किसी अपने को याद करना हो, ऐसे में मन करता है कि हमारी बात उन तक जरूर पहुंचे।
1: और यहीं से जुड़ती है संचार की दिलचस्प कहानी। लेकिन इससे पहले बच्चों जरा सोचिए, आज हम किसी दोस्त को संदेश भेजते हैं और कुछ ही समय में उसका जवाब भी आ जाता है, मगर क्या हमेशा ऐसा ही था? नहीं ना। जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था तब लोग अपनी बात दूर बैठे अपनों तक कैसे पहुंचाते होंगे, कभी सोचा है आपने?
0: नहीं ना बच्चों, एक समय था जब किसी दूर रहने वाले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कागज और कलम का सहारा लिया जाता था। शब्द कागज पर उतरते थे, लिफाफे में बंद होते थे और फिर शुरू होता था उनका
1: शब्द नहीं थे, उसमें लिखने वाले की भावनाएं, इंतजार और अपनापन भी शामिल होता था। और बच्चों, डाकिया भी उस समय किसी खास मेहमान से कम नहीं होते थे। जैसे ही गली में डाकिया दिखाई देते, लोग उत्सुकता से पूछते, हमारी चिट्ठी आई है क्या?
0: हाँ, कभी पोस्टकार्ड, कभी अंतरदेशीय पत्र और कभी लिफाफे में बंद चिट्ठी, ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे बच्चों। इसमें समय लगता था लेकिन इसके इंतजार में भी एक अलग ही खुशी होती थी।
1: फिर समय बदला, संचार के माध्यम गए, नेट ने तो जैसे पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ही ला दिया।
0: आज हम ईमेल भेजते हैं जिसमें कागज और डाक टिकट की जरूरत नहीं। संदेश लिखिए, कुछ ही क्षणों में भेज दीजिए। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार और जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान में ईमेल का खूब इस्तेमाल हो रहा है बच्चों।
1: और यही है संचार के बदलते सफर की खास बात। तकनीक ने दूरी तो वही रखी लेकिन संदेश को उस दूरी तक पहुंचने में लगने वाला समय बहुत कम कर दिया। कभी एक चिट्ठी के जवाब के लिए हमें कई दिनों तक इंतजार करना होता था, आज मोबाइल पर एक संदेश आता है और तुरंत जवाब भी मिल जाता है।
0: लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि चिट्ठियों की अहमियत खत्म हो गई। ईमेल तेज है, सुविधाजनक है, लेकिन चिट्ठियों से जुड़ी भावनाएं आज भी खास है। किसी अपने की लिखावट को देखना, कागज को संभाल कर रखना और पुराने खत को वर्षों बाद पढ़ना, इनकी अपनी ही मिठास है।
1: संचार के साधन बदलते गए, दूरियां घटती गई, लेकिन इंसान की एक चाहत हमेशा वही रही, दूरियों के बावजूद अपने से जुड़े रहना।
0: और डाक सेवा ने भी इस जुड़ाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बच्चों। इसी योगदान और डाक सेवाओं के महत्व को याद करने के लिए हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ बच्चों, 9 अक्टूबर को ही 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी विश्व डाक संघ की स्थापना हुई थी और इसी की याद में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
0: और हमारे देश भारत में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है बच्चों।
1: तो बच्चों, चिट्ठी से ईमेल तक का सफर हमें ये बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, संदेश की असली कीमत उसमें छिपी भावनाएं और अपनापन ही तय करते हैं।
0: हाँ बच्चों, कागज से स्क्रीन तक पहुंचना संचार हमें समय के बदलाव की कहानी सुनाता है और शायद इसलिए चिट्ठी हो या ईमेल, शब्द तभी खास बनते हैं जब उनमें किसी के लिए अपनापन और संवेदना हो।
1: तो अगली बार जब कोई ईमेल भेजे या किसी को संदेश लिखें तो याद रखिएगा, आप भी संचार की इस लंबी यात्रा का हिस्सा है।
0: और कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से जरूर पूछिएगा कि उनके समय में चिट्ठियाँ कैसे आया करती थीं। शायद उनकी कोई ऐसी कहानी सुनने को मिले जिसमें इंतजार भी हो और अपनापन भी।
1: और जब अगली बार आप किसी को ईमेल या संदेश भेजें तो सिर्फ जल्दी भेजने के बारे में नहीं, अपने शब्दों के बारे में भी जरूर सोचिएगा,
0: क्योंकि आखिरकार संचार का माध्यम चाहे बदल जाए, रिश्तों को जोड़ने वाले शब्दों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती बच्चों।
1: तो बच्चों, बातें तो बहुत हो गई और अब कुछ मनोरंजन होना चाहिए दीदी।
0: बिल्कुल, बच्चों को सुनवाते हैं ये प्यारा सा बाल गीत।

आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

कुत्ता भी आया बंदर भी आया, सुन सुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: बड़ा बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये गीत बच्चों को काफी पसंद भी आया होगा। और अब बच्चे भी तैयार हैं दीदी कुछ सुनाने के लिए, तो चलिए बच्चों से सुनते हैं।
2: तो बच्चों, आज बाल सभा में हमारे साथ हैं एक नन्हे दोस्त, जो अपने साथ एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल नारायण तिवारी है।
2: बहुत सुंदर। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं?
3: मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ।
2: और आपको क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे खेलना कूदना और कभी कभी कहानियाँ भी सुनाना पसंद है।
2: कहानी सुनाना ज्यादा पसंद है या कहानी सुनना अच्छा लगता है?
3: कहानी सुनाना।
2: आज क्या सुनाओगे अपने दोस्तों को?
3: मैं अपने दोस्तों को आज एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक होगा रक्त बीज।
2: ठीक है, सुनाओ।
3: एक समय की बात है, एक असुर रहा करता था जिसका नाम रक्त बीज था। वह बहुत समय तक शिव जी की तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न कर एक वरदान मांगा कि आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरी जब भी एक भी बूंद रक्त की जब भी धरती पर गिरेगी तब मेरे जैसा एक और असुर आ जाएगा। शिव जी ने बोला, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान मिल गया। तब रक्त बीज को बहुत घमंड हो गया कि मैं तो बहुत ताकतवर हो गया हूँ जिससे अब मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। उसने तीनों लोकों पर जाकर कब्जा कर लिया। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने बोला, आपने ही रक्त बीज को वरदान दिया है, आप ही इसका उपाय बताइए। भगवान शिव ने बोला कि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, चलो हम सब भगवान ब्रह्मा के पास चलते हैं। 33 कोटि देवी देवता भगवान शिव के साथ में ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बोला, प्रभु कृपा करके हमें एक ऐसा उपाय बताएं जिससे हम सब रक्त बीज को रोक सके। तो उन्होंने बोला, चलो मैं एक ऐसी देवी बनाता हूँ जो कुछ गलत होते हुए देख ही नहीं सकती। तो उन्होंने काली माता का निर्माण किया। तब उनके साथ उस काली माँ को भी भेज दिया। सारे देवी देवता क्रोधित होकर रक्त बीज के पास गए और बोला, तुम्हें किस बात का घमंड है? हाँ, मुझे भगवान शिव से वरदान मिला है कि तो मेरे जैसा एक और असुर प्रकट हो जाएगा। तभी काली माँ सबसे आगे आई और अपना हथियार धारण करके उस को जा, वरना मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। उस रक्त बीज ने बोला कि बहुत सारे देवी देवता ने मुझसे लड़ने की कोशिश की, वो सब मुझे नहीं हरा पाए, तो तुम कैसे हरा दोगी? तो उन्होंने अपना शस्त्र उसकी तरफ फेंक दिया। रक्त बीज घायल हो गया जिससे उसके जैसे एक और रक्त बीज जैसा दिखने वाला राक्षस आ गया। तो उस राक्षस को खत्म करने के बाद उन्होंने सोचा, अच्छा इसे यह वरदान मिला है, जब भी एक भी रक्त की बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो इसके जैसा एक और असुर प्रकट हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इसका गला काट के खपरे पर रख दूं, इसका एक भी रक्त की बूंद जमीन पर नहीं गिरेगी, अंत भी यह और उस राक्षस का अंत कर दिया। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी बात के लिए आज हम दशहरा मनाते हैं।
2: अच्छा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
3: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए।
1: प्रांजल ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी। प्रांजल, और आप क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को?
3: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाऊंगा।
1: कौन सी कविता?
3: हल कंधे रख चला किसान।
1: चलिए सुनाइए।
3: सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान, बैल चल रहे आगे आगे, ते बिल्कुल सीधे साधे, धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो या चाहे रात, नीलू आंधी या चंचवात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। अरे उसका छोटा सा घर, मिट्टी का पर लगे सुघर, राजमहल से भी भर कर पाता हो उसमें विश्राम, हल कंधे रख चला किसान, खुश हो जी भर छेड़े तान, हल कंधे रख चला किसान।
1: वाह, प्रांजल ने बहुत अच्छी कहानी और बहुत अच्छी कविता सुनाई। और दीदी, अब हम बच्चों को क्या जानकारी देने वाले हैं?
2: बच्चों, आप सबने आसमान तो जरूर देखा होगा, दिन में चमकता हुआ सूरज, नीला नीला आसमान, और रात होते ही टिमटिमाते तारे, और दिखाई देता है चमकता हुआ चांद। कितना कुछ है ना हमारे ऊपर, जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उसके बारे में कितना जानते हैं।
1: तो बच्चों, आप तो समझ ही गए होंगे कि दीदी किस चीज की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही समझा कि दीदी आसमान की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रही हैं, है ना। तो सबसे मजेदार बात तो ये है बच्चों कि आसमान जितना हमें दिखाई देता है, अंतरिक्ष उससे कहीं ज्यादा विशाल है, अनंत है। वहां न जाने कितने तारे, ग्रह, उपग्रह और दूसरे खगोलीय पिंड मौजूद हैं।
2: तो बच्चों, आज बाल सभा में हम धरती से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अपनी कल्पना की उड़ान भरेंगे और जानेंगे कि अंतरिक्ष आखिर है क्या।
1: लेकिन उससे पहले बच्चों एक सवाल, क्या आपने कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि ये तारे कितने दूर होंगे, या फिर ये कि चांद हमारे साथ साथ चलता हुआ क्यों दिखाई देता है, और अंतरिक्ष में और क्या क्या है?
2: और ये जानना भी तो एक रोमांचक यात्रा है बच्चों, कि अंतरिक्ष है क्या।
1: तो बच्चों, अंतरिक्ष धरती के वायुमंडल से आगे फैला विशाल क्षेत्र है, जहाँ ग्रह, तारे, उपग्रह और अनेक खगोलीय पिंड मौजूद हैं। हम जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, वो इतना विशाल है कि उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है।
2: हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों में से एक है, और चांद उसका प्राकृतिक उपग्रह है बच्चों। वो स्वयं प्रकाश नहीं बनाता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है।
1: यानी रात के आसमान में चमकता चांद हमें अपनी रोशनी से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकता हुआ दिखाई देता है।
2: इंसान ने आसमान को केवल देखने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समझने की कोशिश भी की,
1: और इसी जिज्ञासा ने हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाया बच्चों। रॉकेट, अंतरिक्षयान और उपग्रहों के जरिए इंसान ने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जाना है, और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।
2: बच्चों, हमारे लिए अंतरिक्ष केवल चांद और तारों की दुनिया नहीं है, आज उपग्रह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल बच्चों, मौसम की जानकारी, संचार के

0: नेविगेशन, पृथ्वी की तस्वीरें और प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने जैसी कई कामों में अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक हमारी मदद करती है।
1: और बच्चों, अंतरिक्ष की खोज केवल दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश नहीं है, इसके जरिए हम अपनी पृथ्वी को भी बेहतर ढंग से समझते हैं। और ये कितनी सुंदर बात है ना बच्चों, दूसरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हुए हम अपनी दुनिया को भी समझना सीख रहे हैं।
0: इसी जिज्ञासा और अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व को लोगों तक पहुँचाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। ये सप्ताह अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के बारे में सीखने और बच्चों तथा युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने का अवसर भी देता है।
1: आपको ये भी बता दे बच्चों कि 4 अक्टूबर 1957 को मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा गया था और 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई थी और इन्हीं घटनाओं से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की तारीखें जुड़ी हुई हैं।
0: तो बच्चों, आज रात जब आप आसमान की ओर देखें और आपको चांद या कोई चमकता हुआ तारा दिखाई दे तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये कितना सुंदर है, ये सवाल भी पूछिएगा कि ऐसा क्यों है।
1: क्योंकि यही सवाल हमें देखने से समझने और समझने से जानने की ओर ले जाते हैं। और अब अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताते हैं बच्चों। आपको ये जानकर हैरानी होगी बच्चों कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अगर आप वहाँ चिल्लाएंगे भी तो पास खड़े व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देगा।
0: हाँ बच्चों, आपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान के अंदर हवा में तैरते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसे में आप ये भी जानना चाहते होंगे कि इंसान ने अंतरिक्ष की ओर अपनी पहली उड़ान कब भरी होगी।
1: तो बच्चों, अंतरिक्ष की इस यात्रा की शुरुआत बहुत रोचक रही। सबसे पहले 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नाम का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा और इसलिए ही 4 अक्टूबर से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की शुरुआत होती है।
0: इसके कुछ ही समय बाद यानी 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम के एक कुत्ते को स्पुतनिक 2 के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो वहां जाने वाला पहला जीवित प्राणी था।
1: और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 12 अप्रैल 1961। सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने वोस्तोक 1 यान में पृथ्वी की एक परिक्रमा की और उनकी पूरी अंतरिक्ष उड़ान लगभग 108 मिनट की थी।
0: और हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। वे 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए।
1: भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रहों, रॉकेटों और विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों पर काम करती है।
0: बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत के रॉकेट कहां से उड़ान भरते हैं? भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। यहीं से भारत के कई महत्वपूर्ण रॉकेट और उपग्रह मिशन लॉन्च किए गए हैं।
1: इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवंतपुरम रॉकेट और प्रक्षेपण यान से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है। वहीं यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में उपग्रहों के निर्माण और विकास से जुड़े कार्य किए जाते हैं। बच्चों,
0: आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने के अपने गगनयान मिशन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। यानी जिस अंतरिक्ष को हम कभी केवल आसमान में दूर से देखते थे, उसे समझने और वहां तक पहुंचने की कोशिश इंसान लगातार कर रहा है।
1: फिर भी अंतरिक्ष के बारे में
0: वाले समय में बाल सभा सुनने वाला कोई भी बच्चा अंतरिक्ष यात्री बने और अंतरिक्ष से धरती को देखकर कहे कितनी सुंदर है हमारी पृथ्वी। तो बच्चों, ये थी जानकारी अंतरिक्ष के बारे में। और हर हफ्ते हम किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज भी हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देंगे बच्चों। भारत की एक ऐसी वीर महिला जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में साहस और आत्मसम्मान की तस्वीर उभरती है, उनका नाम था रानी दुर्गावती।
1: आपने शायद उनके बारे में पहले भी सुना होगा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के चंदेल राज परिवार में हुआ था। कालिंजर आज उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र में स्थित है। वो एक राजकुमारी थी, यानी उनके पास महल था, सुख सुविधाएं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनका जीवन केवल आराम से रहने वाला जीवन नहीं था।
0: बच्चों, उस समय राजघरानों के बच्चों को कई तरह की शिक्षा दी जाती थी। दुर्गावती ने भी बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और

0: लुटपुटा था।
1: लेकिन बच्चों, दुर्गावती ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने छोटे बेटे के संरक्षक के रूप में राज्य की जिम्मेदारी संभाली और शासन चलाया।
0: उन्होंने केवल महल में बैठकर आदेश नहीं दिए, वे राज्य की स्थिति पर ध्यान देती थी, प्रशासन को संभालती थी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोचती थी।
1: धीरे धीरे उनकी पहचान एक कुशल शासक के रूप में बनने लगी। बच्चों, उस समय मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। बच्चों, 1564 में अकबर के शासनकाल में आसफ खान ने गढ़ा कटंगा पर आक्रमण किया।
0: रानी दुर्गावती के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों, मुगल सेना के पास ज्यादा सैनिक और संसाधन थे, लेकिन रानी ने आसानी से हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। बच्चों, जरा कल्पना कीजिए, एक ओर बड़ी सेना थी और दूसरी ओर अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करने का संकल्प लिए रानी दुर्गावती।
1: बच्चों, युद्ध हुआ और रानी ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी युद्ध में वीरता दिखाई, लेकिन युद्ध में परिस्थितियां धीरे धीरे कठिन होती गईं। 24 जून 1564 को नर्रई के युद्ध में रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। अब उनके सामने बहुत कठिन परिस्थितियां थीं। वे चाहती तो आत्मसमर्पण कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
0: उन्होंने अपने सम्मान और स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। बच्चों, और अंत में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
1: और यही कारण है कि आज भी रानी दुर्गावती को साहस और स्वाभिमान की मिसाल माना जाता है। लेकिन बच्चों, रानी दुर्गावती की कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध की कहानी नहीं है। उनकी कहानी हमें अपने जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी सिखाती है।
0: बच्चों, मान लीजिए आपको स्कूल में कोई मुश्किल विषय समझ नहीं आ रहा। आप दो बार कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं मुझसे नहीं होगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें कहता है कि मुश्किल देखकर पीछे मत हटो, कोशिश करते रहो। अगर कोई आपको गलत काम करने के लिए कहता है तो आप जानते हैं कि वो गलत है, तो सिर्फ दोस्तों के दबाव में आकर वो काम मत करो।
1: सही बात के लिए खड़े होना भी साहस है बच्चों। और अगर कभी आपको असफलता मिल जाए तो ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। बच्चों, रानी दुर्गावती के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए और गलत काम का विरोध करने का साहस रखना चाहिए।
0: मुश्किल परिस्थिति हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में जो साहस दिखाया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। बच्चों, उनका जीवन हमें बताता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान है, तो हम मजबूती के साथ उसका सामना कर सकते हैं।
1: और यही रानी दुर्गावती की सबसे बड़ी सीख है। बच्चों, साहस रखिए, सही रास्ते पर चलिए और अपने साथ साथ दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखिए। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय
0: समाप्त होने को है,
1: तो बच्चों से विदा लेनी चाहिए। लेकिन चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। तो बच्चों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। चर्चा का विषय था पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार और चिट्ठी से ईमेल तक का संचार का बदलता सफर। सूत्रधार अवधेश कुमार और रानी शुक्ला, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। शाम 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युवानी आप ये सुन पाएंगे 5:02 पर।

5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। 6 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेती बारी आप सुन पाएंगे।

7:11 में आप सुनेंगे जिले में आजकल, 7:15 पे आप सुनेंगे हिंदी साहित्यिक पत्रिका का कार्यक्रम सत्य दल, 7:45 पर आप सुनेंगे संथाली समाचार पत्रिका, 8 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम रजनी गंधा का।

8:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:45 का वक्त होगा समाचार संध्या का। 9:00 न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से। 10:00 रविवार ये अखिल भारतीय संगीत सभा ये प्रसारित की जाएगी दिल्ली केंद्र से। 11:00 का वक्त होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पे अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम में आइए सुनते हैं पहला फिल्मी गीत, फिल्म यस बोस से। गीत जावेद अख्तर के हैं, संगीत जतिन ललित के, आवाज अभिजीत के।

श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला फिल्मी गीत, फिल्म हाथी मेरे साथी से। गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज किशोर कुमार की।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म ये वादा रहा से गुलशन बावरा के संगीत है, आर डी वर्मन के संगीत, गुलशन बावरा के गीत, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का 10 अक्टूबर को झारखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे देवघर में आयोजित सैन्य संपर्क मेला सह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति देवघर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज रांची में भाजपा और मांझी मंडल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित ज्योति यात्रा की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री साहू ने सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित किया, साथ ही पार्टी संगठन की मजबूती के भी टिप्स दिए। जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक

0: शंभू कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बीट पुलिसिंग व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी बीटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ 24 घंटे पुलिस पदाधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में इस बार माँ दुर्गा के भक्तों को अनोखे पूजा पंडाल की झलक देखने को मिलेगी। मिट्टी की हांडी, घड़े, पुआल और बांस से मां भवानी का भव्य दरबार तैयार हो रहा है। करीब 10,000 वर्ग फीट में बन रहे इस पंडाल में ग्रामीण जीवन और पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची के जीएससीए स्टेडियम में आगामी 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच की तैयारियों को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश, यातायात व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई ताकि मैच के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा और ठहरने समेत अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। राज्य में कल से 9 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चेबासा केंद्र है।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम के 6:02 पर। विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। 7 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। सात 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि के 8 हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 आप सुनेंगे जापान में हो रहे 20वें एशियन गेम्स 2026 के डेली कैप्सूल हाइलाइट्स। रात्रि 10:20 पर गजलों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म कर्मा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जय भारती कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के युगल स्वर में हीरो फिल्म का ये गीत।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यस बोस फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

सड़क फिल्म के इस गाने के साथ ही जय भारती का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और कृषि कार्य में अभी भी व्यस्त होंगे, क्योंकि अल्पावधि में तैयार होने वाले धान पक रहे हैं तथा इसके पश्चात कई प्रकार के सब्जी तथा दलहन लगाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। हाँ किसान भाई बहनों, कोई भी काम को

बेहतर तरीके से करने के लिए यानी जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो काम अच्छा भी होगा और सफल भी होगा। और ये हुनर यानी जानकारी अपने माता पिता, परिवार से या फिर कृषि प्रशिक्षण के माध्यम से मिलता है। सामान्य कृषक अपने अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं, जबकि हुनरमंद कृषि जो भी कृषक हैं उस कार्य को बेहतर और सही तरीके से करते हैं, जिससे काफ़ी लाभ भी मिलता है। इसलिए किसान भाई बहनों, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, उसे भली भांति आप सीख लें और कार्य प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। स्वरोजगार के लिए कई काम हैं, बस अनुभव चाहिए और जहां जिस चीज़ का मांग है, चलने लायक है, वही कार्य स्वरोजगार के रूप में आप कर सकते हैं। हर प्रकार के व्यापार के अलावा लघु या कुटीर उद्योग आदि आप कर सकते हैं। और किसान भाई बहनों, जिस क्षेत्र में जिसकी मांग है उसका ध्यान रखते हुए आप उस कार्य को सीखें एक हुनर के रूप में, और वही हुनर ही आपका आने वाला कल आपके भविष्य के लिए रोजगार का एक साधन या फिर माध्यम बन जाएगा, जिससे आपका निजी और परिवार के लिए आर्थिक स्थिति के लिए एक आय का स्रोत बन जाएगा। किसान भाई बहनों, हुनर आज हर क्षेत्र में, चाहे वो मिस्त्री का काम हो, खेतीबाड़ी का काम हो या फिर कारपेंटर कई प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं लकड़ी से संबंधित, हर प्रकार से उसमें कारीगरी हुनर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो हुनर जानते हैं उन्हें काम की कमी भी नहीं है, क्योंकि वे हमेशा व्यस्त रहते हैं और हमेशा उनके लिए काम आते रहते हैं कि कब कहाँ काम है, उनका एक रूटीन बना रहता है, वे बेरोजगार या फिर खाली नहीं रहते हैं। इसीलिए आज सामान्य श्रमिक के माध्यम से या फिर सामान्य श्रमिक जो हैं उनके अलावा आप हुनरमंद श्रमिक या फिर किसान बने। तो किसान भाई बनो, ये बातें आप ज़रूर ध्यान देंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आगे हम और भी जानकारी लेंगे। आज हमारे बीच एक युवा कृषक विनोद मानकी जी भी हैं, तो उनके साथ मुलाकात करेंगे। और इसके पहले हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं प्यारा सा मुंडारी लोकगीत।

0: जादू मुंडरे एवं साथियों के स्वर में अभी हम आनंद ले रहे थे मुंडारी लोकगीत का। और इस लोकगीत के पश्चात किसान भाई बनो आइए एक सफल कृषक विनोद जी से मिलते हैं और दलहन की खेती पर विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई धान कटाई के पश्चात या फिर कम अवधि में तैयार होने वाले धान जब पक गए हैं तो उनमें भी दलहन की खेती अवश्य करते हैं। कुछ तो हल्के किस्म के जो धान होते हैं गोड़ा धान, उसके साथ अरहर की खेती भी कर चुके हैं और इनके पौधे धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। तो इनकी खेती कैसे और कब करनी चाहिए और हमारे क्षेत्र में कौन कौन से दलहन अधिकतर लोग पसंद करते हैं, आइए इस पर विस्तार हम बातचीत करते हैं विनोद मानकी जी के साथ। और हर प्रकार से अपनी खेती बाड़ी को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो दलहन खेती हो या अनाज फसल या फिर सब्जी फसल। तो इसके अलावा दलहन की खेती भी हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो दलहन खेती पर विशेष चर्चा करते हुए आज मिलते हैं, हमारे बीच में है विनोद जी। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जोहार।
1: जोहार।
0: तो विनोद जी, आप तो धान के अलावा, अभी तो धान पक भी रहा है और कुछ तैयार हो रहा है, कुछ हल्का माने जो धान सब पक के खत्म भी हो चुका है, तो फिर दलहन की खेती आप जैसे इसमें रहर लगाए हैं और धान की कटाई भी हो गया है, तो ये अरहर की जो खेती है ये तो शायद धान जो बुनाई की उसी समय लगा दिए थे क्या ये सब?
1: हाँ, उसी समय वो लगा दिए थे जो अच्छा। धान कुछ उग गया था तो उसी समय हम उसको छीट दिए थे,
0: मैंने एक ही जुताई में दोनों
1: एक फसल ही जुताई में दोनों फसल मतलब अच्छा, करने अच्छा। के लिए
0: हाँ।
1: ये करते हैं।
0: अच्छा अच्छा हाँ।
1: जी हाँ।
0: तो ये तो कम दिन का था, गोड़ा धान था शायद? नहीं,
1: ये गोड़ा धान था।
0: अच्छा, तो गोड़ा धान
1: कम दिन में पकता है, ये 60 दिन का होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो 60 दिन में ये रेडी हो जाता है।
0: रेडी होके अब इसका कटाई भी हो गया,
1: कटाई भी हो गया, मिसाई भी हो गया इसका।
0: अच्छा अच्छा।
1: जी हाँ।
0: तो अभी सिर्फ बच गया ही दलहन वाला अरहर, तो इसमें तो यह पौधा सब अभी आराम से सब बढ़ते रहेगा अभी इसका पौधा?
1: हाँ, इसका ज्यादा देखभाल नहीं करना पड़ता है।
0: हाँ।
1: ये आराम से बढ़ते रहता है, फिर सिर्फ वही गाय बछड़ा से बचा
0: हाँ, हाँ,
1: पड़ता है,
0: थोड़ा बचाना पड़ेगा,
1: नहीं तो फिर अपना ही लॉस है।
0: हाँ,
1: उसमें
0: हाँ।
1: तो सबसे बचा के
0: चारों तरफ इस बार फसल है तो खैर उतना बैल बकरी तो नहीं छोड़ता होगा अभी ना?
1: अभी तो नहीं छोड़ता है, फिर भी थोड़ा जगह खाली रहने से
0: साइड अच्छा, हाँ, उस समय चराने वाला का घुस जाते हैं,
1: लापरवाही कर दिया तो फिर हाँ, अपना लॉस हो जाता है ना।
0: सही बात है। हाँ,
1: तो उसको थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है।
0: तो ये अरहर तैयार होने में तो समय लगेगा, अभी तो फिर पौधा ही बढ़ रहा है और बड़ा बड़ा साइज भी होगा इसका पेड़ जैसा?
1: ये तो पेड़ जैसा बहुत बड़ा साइज होता है, इसका टाइम बहुत लगता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो और मौसम का हिसाब से फूल उल देता है, समय थोड़ा
0: हाँ, हाँ,
1: थोड़ा डर लगता है, फूल हाँ, सब सभी झड़ जाता है, तो
0: अच्छा,
1: उसमें
0: अच्छा,
1: थोड़ा
0: हाँ, मौसम का बहुत असर
1: मौसम
0: पड़ता
1: का
0: है।
1: बहुत असर पड़ता है इसमें
0: फूल के समय, मतलब सही मौसम रहेगा तो अच्छा होगा।
1: सही मौसम रहना चाहिए।

0: हाँ,
1: तब अच्छा होगा, सूखा मौसम रहना चाहिए। बादल उदल कर दिया तो इसमें थोड़ा,
0: हाँ, इसमें तो और दूसरे फसल में भी इस तरह का मैंने प्रभाव पड़ता ही
1: है। इसलिए मौसम, इसके लिए अच्छा से मौसम रहना चाहिए।
0: तो ऐसे जो गोड़ा धान के साथ अगर दिए तो इसमें तो ज्यादा घना नहीं है, दूर दूर में पौधा है, तो ऐसे दूर दूर में तो बहुत अच्छा पौधा होता होगा।
1: हाँ, दूर दूर में इसलिए लगाया जाता है कि घोड़ा धान सब भी काटने के लिए हम लोग को सुविधा हो, नहीं तो फिर सामने दे देंगे तो वो भी कटा जाएगा साथ में।
0: जल्दीबाजी में
1: जल्दीबाजी में काटते हैं तो उसको भी बचा के रखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा कम देना है।
0: अच्छा,
1: ज्यादा होता है इसमें।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, थोड़ा दूरी बना के रखना पड़ता है सबको।
0: यानी कि मिश्रित खेती आप मैंने इसमें किए थे और एक के बाद एक दूसरा अब तैयार होने वाला है, घोड़ा धान हो गया, उसके बाद दलहन भी होने वाला,
1: दलहन मिला।
0: हाँ, तो इसमें समय लगेगा। और ये जो दिए हैं तो देसी वाला ही है कि थोड़ा अच्छा किस्म का कहीं से लाए थे बीज वगैरह सब?
1: ये देसी वाला ही है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, देसी वाला ही है ये।
0: लेकिन झाड़ हो जाता है, बड़ा हाँ, बड़ा पौधा होता है।
1: झाड़ अच्छा हो गया तो पौधा मतलब फल भी अच्छा होगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: उसका
0: उपज भी अच्छा रहेगा।
1: हाँ, अच्छा रहेगा, इसलिए वो देसी वाला अभी ट्राई करके देख रहे हैं, अगला साल फिर चेंज किया जाएगा।
0: अच्छा, ये सब भी थोड़ा दो किस्म का भी कहीं कहीं देखा जाता है कि मटर जैसे बड़े बड़े आकार के इसका दाने होते हैं और पौधा भी बहुत 2-3 साल तक शायद इसमें रह जाता होगा।
1: आजकल तो सब हाइब्रिड का जमाना है।
0: हाँ, हाँ, हर चीज
1: तो
0: सब निकल,
1: हर चीज सब निकले रहा है, बड़ा छोटा तो है इसमें।
0: हाँ,
1: तो किसी को बड़ा भी पसंद रहता है, किसी को छोटा हाँ, भी पसंद रहता है।
0: हाँ,
1: देखते हैं कैसा होता है, फल का ऊपर निर्भर है ये।
0: अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये सब दलहन के पश्चात आप लोग झाड़ते हैं, पीटते हैं और दाना को अलग करते हैं, और इसके बाद जो ये जो पौधा है ये बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं, तो ये सब भी घेरान के लिए या फिर कोई लकड़ी उकड़ी जलावन के लिए भी तो काम आ जाता होगा ना?
1: देखिए, ये घेरान के लिए तो कुछ दिन चलता है।
0: हाँ,
1: नहीं तो फिर जलावन के लिए तो है ये है।
0: हाँ,
1: ज्यादा मजबूत तो रहता नहीं है दाल का ये पौधा है।
0: हाँ, हाँ,
1: उतना तो लास्टिंग करेगा नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
1: जलावन के लिए ज्यादातर काम आता है। हाँ हाँ,
0: तो जुताई आप लोग शुरुआत में कैसे किए थे, ऐसे देसी हल ना ट्रैक्टर वगैरह क्या चीज से?
1: आजकल तो देसी हल मिलना मुश्किल है।
0: हाँ, हाँ,
1: ट्रैक्टर का भरोसा से ही आजकल तो ज्यादातर।
0: अच्छा,
1: चल रहा है।
0: हाँ, आजकल लोग गाय बैल रखना भी धीरे धीरे मैंने कम कर रहे हैं नहीं?
1: उसमें देखिए, गाय बैल में क्या है, टाइम ज्यादा लगता है,
0: उसके पीछे रहना
1: उसका
0: पड़ेगा।
1: पीछे रहना पड़ेगा। या अगर हम एक टुकड़ जुताई करने के लिए दिन भर लगता है तो वो एक घंटा में कम्प्लीट हो जाता है।
0: सही बात।
1: इस आधार से आदमी को अभी कम समय चाहिए,
0: कम समय में ज्यादा काम चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ,
1: आजकल का टाइम में।
0: हाँ, सब कोई मैंने हमेशा भागदौड़ में रहते हैं, बिजी रहते हैं अलग अलग काम में, इसीलिए
1: उसको भी तो देखना होगा ना, और कुछ करना है।
0: हाँ,
1: मान लिया और कहीं टमाटर लगाना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: उधर भी ध्यान देना पड़ेगा।
0: हाँ,
1: इसी में दिन भर लगे रहेंगे तो फिर उधर और एक दिन लग जाएगा ना,
0: लग जाएगा।
1: हाँ, इसलिए टाइमली
0: मैंने 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा करके फिर उसमें बीज वगैरह छींट दिया ना।
1: हाँ, भुरभुरा करके बीज छींट दिए। हाँ,
0: और इसके अलावा क्या करते हैं, जैसे धान कटाई के बाद तो बहुत सारा खेत खाली हो जाएगा तो उसमें तो फिर मौसम आ जाएगा, चना मटर और कुल्थी वगैरह ये सब भी करते हैं क्या?
1: जी, कुल्थी तो अभी का मतलब कूड़ा धान कटाई हो गया उसी टाइम, वो भी कहीं नहीं डाले रहेंगे अगर ये रहर का दल तो उसमें कुड़ का दल लगा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा। हाँ,
1: हाँ, उसमें भी वो जगह मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए,
0: होना
1: ना
0: चाहिए। हाँ,
1: हाँ, तो वही कुड़ दल लगा देते हैं। अभी ये कटा, अभी धान, ये खेती का धान कटाने के बाद तो हम लोग को चना का टाइम आएगा,
0: ज्यादा उसमें डिमांड रहता है,
1: ज्यादा ज्यादा डिमांड रहता है उसका, तो जो चना होना का हम लोग का ये करते हैं।
0: अच्छा, चना भी क्या पूरा सुखाते हैं कि जो फलता है और कच्चा में ही बेचने में ज्यादा फायदा रहता है?
1: देखिए, जो कच्चा में जो फायदा होता है जितना होना चाहिए उतना हो जाता है।
0: अच्छा,
1: बाद
0: अच्छा।
1: में सूखा में भी तो पैसा
0: कुछ तो बच जाता है, तो
1: कुछ तो बच
0: जाता है।
1: हाँ, तो वो तो सूखता ही है, उसको तो अब लाना ही पड़ेगा। उसको लाने के बाद तो वो भी अच्छा खासा दाम मिलता है आजकल, तो 100 रुपया से स्टार्ट है अभी।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है और होना भी चाहिए किसानों का, मैंने अगर इतना मेहनत से कर रहे हैं तो अगर लॉस होगा तो फिर बेकार है कृषि खाद करना भी।
1: अगर अगर किसान को लॉस हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है।
0: हाँ,
1: क्या है कि कम पैसा में, ज्यादा पैसा में लेके कम पैसा में सेल करना बहुत मुश्किल है।
0: मुश्किल है, घाटा में तो मुश्किल
1: है, घाटा में तो मुश्किल है, ऐसे किसान कैसे काम करेगा।
0: हाँ,
1: तो
0: बात तो सही है।
1: इसीलिए जब सब फर्स्ट टाइम में लगाने से जब फल हो गया तो कुछ
0: अच्छा दाम मिलता है,
1: अच्छा दाम मिलता है।
0: जो बच गया में अगर कोई नहीं निकाले हैं बाजार में उस समय निकल गया तो फिर अच्छा दाम मिलता है, खरीदने वाला भी उस समय छीना झपटी करते होंगे।
1: हाँ हाँ, उस समय तो देखिए हर चीज फल नया फल आ गया तो नया फल आ गया तो उसको टेस्ट अलग रहता है और सभी का मन में रहता है कि चलो निकल
0: लेने का इच्छा भी होता है,
1: खाने का इच्छा भी करता है।
0: कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई नया चीज हो, चाहे मकई हो या फिर कोई भी चीज हो। और मटर वगैरह भी तो लगाते होंगे, तो लगाने का तरीका कैसे है, अपने पुराने तरीके या फिर कोई कतार में लगाते हैं, बेड बना के ना लाइन में, किस तरह का करते हैं आजकल?
1: नहीं तो लाइन में लगाते हैं मटर वटर, अच्छा से लाइन बना के, क्योंकि उसमें पानी जो ये करने का है, खेत में डालने का है, तो उसमें चलने के लिए भी सुविधा रहना चाहिए,
0: तोड़ने के लिए भी सुविधा,
1: तोड़ने के लिए भी सुविधा होना चाहिए, इसीलिए ये सब लाइन में ही लगाया जाता है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ इधर उधर लगा देंगे तो फिर पैर में सब लगेगा, फिर खराब हो जाएगा,
1: खराब हो जाएगा तो फिर वो उगेगा नहीं उगेगा उसका गारंटी नहीं रहेगा।
0: नाजुक पौधा,
1: नाजुक पौधा रहता है मटर का, तो इसीलिए उसको अच्छा से ही लाइन में लगाया जाता है।
0: अच्छा अच्छा, और कहीं कहीं जैसे जंगली क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में, तो उस सब में तो फिर मूंग वगैरह, फिर और जो लत्तर वाले जो दलहन है उस सब भी करते हैं, तो उस सब तो शायद खाद उद नहीं देते होंगे, नहीं वहाँ तो काफी कंपोस्ट सब रहता ही है?
1: नहीं, उसमें तो खाद उद नहीं दिया तो रहता ही है उसमें, वो जंगल किनारे और सब तो उसको
0: पत्ता
1: सड़ा हुआ रहता है, उसी में वही खाद बन जाता है, उसी से अच्छा से होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो लत्ता जैसा से पेड़ में उड़ जाता है।
0: हाँ,
1: अच्छा से ही होता है वाला।
0: अच्छा हाँ, तो दलहन सब क्या कोई समतल जमीन में ही करना चाहिए या फिर कोई भी खेत सब में, पठारी हो या उबड़ खाबड़, कहीं भी तो कर सकते हैं जोताई करके ना?
1: हाँ, कहीं भी कर सकते हैं, उसमें क्या है,
0: सिंचाई के लिए उतना
1: सिंचाई के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ता है,
0: खाली नमी रहने से ही हो गया।
1: और सबके लिए वो सब चाहिए, जैसे कि टमाटर हो गया, बैंगन
0: अच्छा,
1: हो गया,
0: वो सब्जी
1: उसके लिए तो उसके लिए तो अच्छा जगह ही चाहिए।
0: हाँ,
1: पानी का सुविधा होना चाहिए,
0: होना चाहिए।
1: हाँ
0: जी, और जैसे कोई किसान लोग जैसे करते हैं, जैसा कोई मूंग लगा दिए या फिर और भी मसूर वगैरह लगा दिए, तो कुछ तो बीज बहुत महीन किस्म के होते हैं, छोटे छोटे, और कुछ बड़े होते हैं, तो दोनों में लगाने का तरीका आप लोग क्या, ट्रैक्टर में या फिर रोटावेटर, और किस तरह के अपनाते हैं वैसे?
1: देखिए रोटावेटर भी अपनाते हैं।
0: हाँ,
1: और ऐसे तो फिर ये वाला भी अपनाते हैं,
0: जो हल वाला है,
1: जो हल वाला है।
0: हाँ,
1: हल वाला जो है चना के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: अच्छा, उसका जोताई तो जोता, अलग होता है, वो मतलब ढेला निकल जाता है,
1: ढेला निकल जाता है। हाँ, ढेला के लिए अच्छा रहता है चना के लिए।
0: अच्छा,
1: और सबके लिए तो रोटावेटर भी चलेगा, लेकिन चना के लिए स्पेशल हल वाला चाहिए।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें उतना महीन मिट्टी करना नहीं है?
1: नहीं, उसमें मिट्टी उतना,
0: ढेला
1: भी रहेगा चलेगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: और सबके लिए रोटावेटर करते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: जैसे चीज रहता है वैसे।
0: अच्छा अच्छा, हाँ छोटा छोटा बीज जैसे मूंग और मसूर, ये सबसे छोटा बीज है, उसको उगने के लिए थोड़ा सा मिट्टी अच्छा रहेगा, नमी रहेगा, समतल हाँ, रहेगा, तो फिर जल्दी उग भी जाता है।
1: हाँ, वो तो
0: खाने में भी सुविधा होता है उस समय,
1: वो तो ऊपर में भी छीट देने से मसूर हो जाएगा। हाँ, रोटावेटर जोतने के बाद ऊपर में छीट देने से भी नमी रहना चाहिए, नमी के वजह से वो उग जाता है।
0: हाँ हाँ हाँ, अच्छा कुछ देहात क्षेत्र में जैसे कुछ देखते हैं पुराने तरीके से ही खेतीबाड़ी, जैसा धान की समय में वो कुछ खसारी वगैरह सब भी कटाई के आसपास में, जब पानी नहीं सूखा रहता है उस समय ही वो लोग छिड़क देते हैं, और अब पैर में जो रौंदते जाते हैं तो उसी समय वो धीरे धीरे उगना शुरू हो जाता है, तो ये भी अभी भी ऐसा तरीका करते हैं क्या कहीं कहीं?
1: खसारी सब तो देखिए वो तो नमी रहने से ऊपर में छीट देने से हो जाता है धान कटाई होने के बाद।
0: अच्छा अच्छा,
1: नमी रहना चाहिए।
0: हाँ,
1: हल रहना चाहिए,
0: बीज अगर उसमें सट गया और नमी रहा तब तो उसी में अंकुरित हो जाता है।
1: हाँ, उसी में अंकुरित हो जाता है वो।
0: अच्छा,
1: उसके लिए उतना परेशान होना,
0: धान कटाई में तो अपना पैर में उसमें दबाते जाते हैं वो। हाँ, सब तो सट जाता है
1: धान कटाई होने के बाद, वो जब धान उठाते हैं तो उसके बाद उसको ऊपर से छीट देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ
0: तो ये सब तैयार होने के बाद आप लोग तो मिसाई वगैरह कैसे करते हैं, मैंने कोई पीटते हैं या फिर सुखाते हैं या फिर कोई इसका तरीका, जैसे पहले तो बैल वगैरह सब भी मारा जैसा ये करते थे, रौनते से दौनी करते थे,
1: अच्छा,
0: पीट के ही अधिकतर ये करते हैं।
1: आजकल तो दाल उल तो पीट के ही उसको रेडी करना पड़ता है,
0: पूरा मैंने
1: सुखाना पड़ेगा उसको अच्छा से झड़े। और धान तो आजकल
0: हाँ, उसके लिए तो काफी मशीन आ गया,
1: काफी मशीन आ गया उसको, तो फिर बड़ा बड़ा ट्रैक्टर जैसा वो भी मशीन आ गया, वो भी सुविधा है।
0: छोटे आकार का, बड़े छोटे
1: आकार का, बड़े आकार का दोनों है।
0: दिनों दिन मैंने ये सब बदलते जा रहा है और लोगों के लिए, किसानों के लिए सुविधा भी होते जा रहा है। मैंने कटाई के पश्चात आजकल लोग तो खलियान भी नहीं कर रहे हैं, सीधे खेतों में सारा चीज हो जा रहा है।
1: आजकल तो आजकल टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कम समय में सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, ऐसा
0: अच्छा, फसल तैयार हो गया तो खेत से ही सारा चीज एकदम
1: खेत से ही
0: मैंने रेडी होके आ जाता।
1: कौन ढोएगा, कौन लेके जाने के लिए इतना आदमी कौन है? एक जगह कटा कर दो, फिर मशीन लगा दो, एक घंटा में काम खत्म। दिन भर आपके पास समय ही समय रहता है।
0: इतना परेशानी भी नहीं,
1: इतना परेशानी भी
0: नहीं, मजदूर को उतना खुशामत करने की
1: जरूरत नहीं है।
0: ज्यादा खर्चा भी, समय भी लग जाता था, इसीलिए ये तरीका अभी दिनों दिन अभी विज्ञान के क्षेत्र में काफी नया नया तरीका भी अपना रहे हैं, तो किसानों के लिए और सबके लिए अच्छा सुविधा हो रहा है। अच्छा, अंततः ये बताएं कि जैसे आपके प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारे किसानों को बीज या फिर कोई उपकरण वगैरह भी दिए जाते हैं, तो दलहन में भी कोई बीज वगैरह ऐसे समय पर आता है और आप लोग को इस सब का सुविधा मिल रहा है क्या?
1: देखिए, समय पर तो नहीं मिलता है, तो मिल जाने से तो बहुत अच्छा है। तो नहीं तो जुताई किया बोला हम लोग का ये हो जाएगा, फिर से मिट्टी बैठ जाएगा।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, जिस समय आपका फसल तैयार हुआ और आप रेडी किए हैं, उस समय अगर नहीं मिल रहा है तब तो कहीं से आप खरीद के भी अपना व्यवस्था कर लेते हैं? नहीं,
1: हाँ, आजकल तो मार्केट भी
0: अच्छा आसपास में मिलता ही है,
1: बीज भंडार में मिलता ही है आजकल तो।
0: तो इसके लिए कोई खास मिट्टी में ही करते हैं या फिर कोई भी खेत, कोई भी बलुआही दोमट किसी में भी हो जाता है?
1: वो तो किसी में भी हो जाता है, उसमें अच्छा, उतना अच्छा। मिट्टी का कोई खास वैसे क्वालिटी नहीं है, ये किसी में भी हो जाता है,
0: हर प्रकार मतलब का मिट्टी में
1: अच्छा से अगर मन लगा के कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। यही बात है,
0: तो इसलिए थोड़ा बहुत मिट्टी में उपजाऊ होना चाहिए, कुछ ना कुछ डालना होगा ना।
1: हाँ, कुछ ना डालना ही पड़ेगा, आजकल के जमाने में अगर नहीं डालते हैं तो होगा ही नहीं।
0: हाँ, मिट्टी भी धीरे धीरे उपजाऊ खत्म होते जा रहा है और ज्यादा रासायनिक खाद को तो इस्तेमाल नहीं है करना चाहिए, ताकि मिट्टी भी टाइट होते जा रहा है।
1: नहीं है करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा,
0: देना ही पड़ेगा। कहे कि खेती अगर कर रहे हैं और ऐसे ही लॉस होगा तो फिर सारा मेहनत और खर्चा भी बेकार
1: हो जाएगा।
0: तो आपने किसान भाइयों को दलहन की खेती के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
1: जोहार।

और इसी पंचप्रगणिया लोकगीत के साथ ही किसान भाई बहनों, आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें सभी को पुनः एक बार जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। शाम के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद में कथित अनियमितता को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड में कई दवाइयों की खरीद काफी अधिक कीमत पर की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन मामलों की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मूलवासी सदान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह ओबीसी के लिए भी अलग कॉलम होना चाहिए। राजधानी में लगातार चेन छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ओरमांझी थाना क्षेत्र के चुट्टू गांव के पास आज पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से गिरोह का एक सदस्य घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से छिनतई के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। नशीली दवाओं की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 120 बोतल सिरप और करीब 1000 टैबलेट बरामद किया गया है।

0: इसके अलावा मोटरसाइकिल और एक स्मार्टफोन भी पुलिस ने जब्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री कल से शुरू हो रही है। GSCA ने बताया कि 5 और 6 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकटों की बिक्री होगी। 1600 रुपए का सबसे सस्ता और 18000 रुपए का सबसे महंगा टिकट होगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 टिकट ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम हो अखड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हो अखड़ा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग।

विकास योजनाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम सन्मार्ग में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, हम सन्मार्ग कार्यक्रम में विकास योजनाओं पर जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर हम बातें करते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले बातें करते हैं आयुष्मान भारत पर। जी हाँ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोताओं, इसके मुख्य विशेषताएं हैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जो पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख तक का कैशलेस यानी बिना नगद दिए स्वास्थ्य कवर मिलता है। इसका यह योजना अब 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को और 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करती है। अस्पतालों का नेटवर्क जो है वो देश भर के हजारों सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मैं बता दूं कि कार्ड बनाने के पहले से मौजूद बीमारियां भी इसमें पहले दिन से कवर होती है। अब आपके जहन में तो ये आ ही रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो श्रोता हैं उनके आयुष्मान कार्ड तो बन चुका होगा, लेकिन अगर किसी का अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो मैं बता दूं कि ये कैसे बनता है। ऐसे तो कई केंद्र हैं जहां जाकर आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद उसमें विकल्प चुनें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और परिवार के सदस्यों की सूची खोजें। आधार ओटीपी या जो है ये जो फेस या चेहरे को देखकर जो होता है के जरिए ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। सत्यापन के बाद आप अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-99 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रोताओं, जब हम योजनाओं की बातें कर रहे हैं, यूं तो सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, विभिन्न विभागों के द्वारा भी योजनाएं इस पर लोगों को लाभान्वित कर रही है। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं कि मछली पालन में सरकारी योजनाएं क्या क्या है। जानकारी दे रहे हैं जयंत रंजन। सरकार की ओर से हर साल कुछ नई नई योजनाएं मत्स्य पालन के लिए शुरू की जाती है। आज इसी विषय पर जानकारी लेने के लिए हम हैं जयंत रंजन जी के पास। इस वर्ष कौन कौन सी नई योजनाएं सरकार की ओर से आई?
3: जी जोहार किसान बंधु, मुझे अक्सर अच्छा लगता है कि मुझे आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है और मैं उस पर आप लोग को समक्ष कुछ कह पाता हूं। तो देखिए, मत्स्य विभाग तो आप किसान बंधुओं को बढ़ाने के लिए हर तरह से आर्थिक मदद करने के लिए तत्पर है, ताकि आपका जीवन यापन अच्छा चल सके और आपके जीवन स्तर में सुधार हो सके। हम अभी इस वर्ष जैसे के लिए जो भी योजनाएं हमारी पाइपलाइन में हैं, जो आने वाली हैं चाहे आ चुकी हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा एक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड पीरियड में जो लॉन्च किया गया था, वो अभी योजनाएं बहुत फलीभूत चल रही हैं और अच्छी उसका जो आउटकम है, उसका जो परिणाम है, बहुत अच्छा है। तो इस पर जैसे एक जो योजना है आप लोगों के सुरक्षा से संबंधित है, ये जो दुर्घटना बीमा बोलते हैं, वो हर किसान के लिए 5 लाख रुपए का बीमा है, निःशुल्क है। और किसी तरह की और अपंगता होती है तो 50% 2.5 लाख रुपया, हॉस्पिटल का भी 25,000 रुपया खर्च का एक नई योजना लॉन्च की गई है। तो जो भी किसान बंधु हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वो मछली पालन करते हैं, मछली बेच

आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे जिला में बहुत अच्छा बायोफ्लॉक का लोगों का सफलता की कहानी भी छपा था, लोग उनको अभी उस इस योजना से लाभ मिला और नौकरी जो छोड़ चुके थे अब इसी पर पूरी तरह निर्भर हैं और अच्छा आमदनी कर रहे हैं। आर एस है, फिर केज कल्चर है, डैम में, खदान में, तीन पहिया आइस बॉक्स है, मोटरसाइकिल आइस बॉक्स है, कोल्ड स्टोरेज है, हैचरी बनाना है, फीड मिल बैठाना है, आप तालाब बनवाना चाहते हैं, आप रंगीन मछली का पालन करना चाहते हैं, आप इसके अलावे अगर कुछ मत्स्य सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, आप और भी योजनाएं हैं, कोल्ड स्टोरेज, जो भी आइस प्लांट, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो आप करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत हम चाहेंगे कि जो भी इच्छुक हैं वो ज़रूर आवेदन दें। और सबसे बड़ी बात है कि अब राज्य से इस पर जो अनुदान की राशि पहले 40-7% थी वो अब बढ़ने वाली है, हो सके भविष्य में 70-80% हो जाएगी। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं, इसीलिए जिला मत्स्य कार्यालय में आकर प्रधानमंत्री संपदा का अवश्य आवेदन दें। अब रही कि राज्य योजनाएं में क्या क्या रहे, हमारे यहाँ अभी तत्काल में एक समेकित मत्स्य पालन, बतख मछली पालन, जिसका 2-3 साल से हम लोग शुरू किए हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, परिणाम रहा है, क्योंकि एक एक एक किसान को हम 160 नंबर डकलिंग देते हैं, उसे वो बड़ा करके अंडा और उसको भी मांस को भी बेचते हैं, उसमें भी अच्छा खासा 35-40 हज़ार रुपये कमा लिए हैं लोग, मतलब अंडा से ऐसा कुछ देखा गया है। उसके अलावे ऐसा देखा गया है कि हमारे जितने भी किसान हैं वो जैसे ये रोहू कतला मृगल प्रजाति की मछलियाँ तो कर ही रहे हैं, जिसका अच्छा डिमांड है, हम लोग महाझींगा शुरू किए हैं, जिसको प्राउन कल्चर हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, 3-4 लोग को दिए थे, इस बार फिर हम लोग 10 जैसा मंगाने के हैं। तो उन फार्म जो बोलते हैं ना, तालाब के पास से 500 रुपये केजी बिक जा रहा है वो झींगा, तो इतना अच्छा आमदनी है इसमें कि अभी हमको लगता है कि 2-3 क्विंटल उन लोग उत्पादन किए हैं, 1.5-2 लाख रुपये आराम से कमा लिए हैं। तो जो किसान बंधु चाहे जो भी अच्छे बेरोजगार जो भी हैं और चाहते हैं कि मछली पालन में और ज़्यादा आमदनी करें, ज़्यादा प्रॉफिट करें, तो महाझींगा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा देसी मागुर, जो आप देखते हैं कि थोड़ा आप कल्चर विलुप्त होते जा रहा है हमारा, देसी मागुर उसको बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, देसी मागुर को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट जिनको करना है देसी मागुर के लिए। प्राय ऐसा देखा गया है कि जैसे किसान बंधु को देखिए, मछली पालन में मेनली जो है ना इनपुट में खर्च होता है, मतलब लागत खर्च, जैसे मछली पालन में ज़्यादा हम लोग क्या है कि खाना पर, मछली के आहार पर ज़्यादा वो 60% जो है खर्च वही मछली आहार पर ही होता है। तो ऐसा देखा गया कि किसान बंधु लोग को ना सही से मतलब अच्छा आहार लेने में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है और थोड़ा कॉस्ट उठाने में असक्षम होते हैं, तो हमारा विभाग जो है इसलिए फीड बेस्ड फिशरीज, मतलब आहार आधारित मछली पालन हम योजना शुरू किया है, जिसमें 50% अनुदान हम लोग खाना पर दे रहे हैं, इसलिए उनको लाभ अब मिल रहा है। तो जो भी मछली पालन करते हैं, जिनको मछली पालन करने में असुविधा है, तो वो भी हम लोग जैसे कम से कम 7 क्विंटल से 10 क्विंटल तक मत्स्य आहार हम लोग देते हैं किसान को, वो अपना ले सकते हैं, और कहीं से बाज़ार से भी लेके हमको देंगे तो हम दे सकते हैं, ना तो चांडिल और कहीं धनबाद रांची वगैरह में है हम लोग का विभागीय मत्स्य फीड वाला मिल है, वो वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और सारी भी योजनाएं हैं, जैसे किच कल्चर बता रहे थे, खदान जहाँ माने कि तालाब ये जलाशय है, खदान है, वहाँ आप ग्रुप बनाइए, मतलब समिति बनाइए, समिति बनाने के बाद केच कल्चर आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी योजना है। जो विस्थापित लोग हैं, रोजगार के लिए भटक रहे थे, उनको हम लोग मुख्य धारा में बहुत जगह लाए हैं, ऐसा कहानियां हैं, तो वो केच कल्चर के लिए भी कर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। रिवेराइन फिश फार्मिंग एक है, जो हम मान लीजिए जिसके पास तालाब नहीं है, चाहे वो नहीं है तो नदी में या डैम में कहीं घेर के मछली पालन कर सकते हैं, उनको भी इनपुट और मछली जाल का सारी सुविधाएँ हम लोग देते हैं। इनके अलावे और सारी योजनाएं हैं, जैसे तालाब बनाने की योजनाएं हैं, जो जिनके रहने के लिए छत नहीं है उनको भी हम वेद व्यास आवास देते हैं, वो ज़रूर लाभ लें। तो ये सब अभी मोटी तौर पर ये सब योजनाएं चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों को इनकी आवश्यकता है वो जिला मत्स्य कार्यालय में ज़रूर संपर्क करें और लाभ लेकर अपना जीवन

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब आइए श्रोताओं को जानकारी लेते हैं मिशन वात्सल्य योजना पर।
6: सबन को जुआरगे अन्यानुतुम ब्रीता बिरुली चैम्बासारिन टाइन है ना बालगरिन पैटे तेने तो ना अबुन पोस्टर केयर या डिटेल तेन का जीव हुआ। जैसे कि अबू अधान अबू उड़ा मायोम रिश्ता तो का भाई हुआ, हमेशा प्यार अंत ये देखभाल ते के भाई हुआ। तो अबू जिलो जिले रे इनका बहुत पूरे होन को मिना कुआ, इंगा अबू को बांग कुआ या तो इंगा अबू को मिना करो एंड किसी जा लिखते काको नल दई को तना होन को काको साहित्य बे दई को बगड़ा दर कुआ को। तो इनकन होन को जो अब ना इंगापो को बंग कुआ, इनकन को जो गोद्र बो इट कुआ, इनकन होन को जो ना काको इडे केने को ना इनका इनका बहुत पूरे इंगा को मिना कुआ ची ना निपा इन पाउ नल बा को तना बो जाता के भटकाओ बांध तना को। इनकन होन को, इनकन होन को जो ना अब गबालगिर रे मिना कुआ इना लगेन। तो नैन निकन होन को लगेन ना अब सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य के भीतर रे पोस्टर केयर योजना चलाओ तना नैन योजना को एन योजना का इटानु तुम दो पालन पोषण देख रेख योजना को कजी इनको नुनु तुम गेड़े को नैन योजना इनकन होन को लगेन मीना जो कुछ समय लगेन जैसे ना अबू एन उड़ा दूर कर गया इनको ना उड़ा उड़ा रे चिमी बने को टाइन ना प्यार तो बुरी कुआ होन को एन अनुसार नैन होन इनको लगे था ना एन नैना अबू एन होन को उम्र 18 वर्ष तक पूरे इनरे को नैन को अबू इत दिए को अबू एंड अच्छा ना अबू पोस्टर केयर ना अबू जगह तीन चीना आता ना पोस्टर केयर पान पोषण बल चीना आता ना नीना दो एन हमेशा होन को इल्के लगे तो बांग कोई सा गोद लेना मैंने अबू ना दो कहा था ना नीना एक ठू ना एन कुछ दिन लगे होन को बस वो दुआरे बने तो बुरी के कुआ एक ठू परिवार या माहौल बुमा कुआ इना लगे था ना। जब तक आए आया जो इंगापू जो मूड जो मायम इंगापू में नहीं आया था कासनो तब तक वो एक ठू परिवार बुरी के कुआ एना था ना एन तो अगर अबू एन जाइए होन को आपको आइए रे रास अब अगुई तब नम तना एन तो अबू ने ना नैन पालक इंगा अपू बन के अबू एक दानबू एम दई निना लगेन इंगा अपू कुआ जो ये तने उम्र हुबावा इना तना इंगा अपू जो न बारो जोड़ाओ कहते 115 ते अधिक दो मैंने पूरे का हुबावतिया अगर कम गए टाइम तिया ना तो पूरे अधिक दो का आगे ओंडो अगर मिडो आए एक अकेला के में नहीं जैसे ना अबू दो मिडो का आंधी के ने या तो ना बागिया का नाम मिडो अबू नाई चाहिए तो या तो आया इरा गो या ना या तो कोई दो आया हो गो या ना इनकन को ईद दिए लेकिन अकुआ कम से कम 35 वर्ष हुबाते दूर कर गए एनेते कम का गे ताकि ये तो अगर पूरे दोनों मिलाओ कहते जैसे ना हम बूढ़ी की ये दो 115 वर्ष ते पूरे हुआ होती है लेकिन ना निंता रे इन्हें ना काजी उबूची एन कुआ तन को दो मिडो जो सिंगल हो मिटाइने इन्हें दो कबू एम दई कोई होन दो लेकिन मिडो इरा सिंगल टाइने आए मी नहीं आए दो कोई होन को एम दई कुआ बो एम दई एन तो अगर अबू नैन पश्चिमी सिंहभूम जिला रे निवासी तेने बू एन तो अबू ए एन मुखिया के द्वारा एक तो प्रमाणित ये एन इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बही ते हुआ एन तो पुलिस से एन वेरिफिकेशन हुआ एन तो पर केंद्र तब जो नम आए ना एन रिपोर्ट ते एन ते ये ना इंगा पुकुआ जो एन मेडिकल रे अबू जी तेने हॉस्पिटल रहते दोनों ऐसे शारीरिक मानसिक रूप से पूरे बाणी तो को स्वास्थ्य को टाइम छे जैसे भी कजी दई छी परिवार जैसे ना अब होन को लगेन होन को बहुत ना सरकार ना बहुत बड़ी बड़ी योजना बोलता ना अटकर तन गया एन होन को हर परिवार रे अधिकार टाइन एन हिसेब ते एन तो हुजू हुजू अब उमर बाणी अब सबन को मिलाओ कहते निकन होन को जो दुर्कर होन को जिनको परिवार बनो जो ना एक टू ना अनाथ आश्रम को टाइन निपान पको भटका बांधता इनको बाणी भविष्य बो इमा कुआ एंत नीना रिया मिडो अबू सरकार पैते योजना कर जो जो ये परिवार होन को इरासक हुआ रिके को तो सरकार पाते 4,000 रुपये आर्थिक सहायता और नमोदन तो नीना लगे अबू नीना कौन तारीख हुआ अबू खजी ये एड्रेसिंग का जी बुतने जिला बाल संरक्षण इकाई अब डीसी ऑफिस रे तीसरा तल्ला रे मीना एंदो नीना इंता सेन कहते फॉर्म बु पर दई जान भी जानकारी हुआ इंता बु से नौ दई अगर अब कभी जाम दिक्कत अब कबू अट करता है डीसी ऑफिस ना तो जैसे ना अब डीसी ऑफिस को अब दाना कौन ता रही है जान दिक्कत हुआ इन फोन नंबर इनका जी इतने फोन नंबर रे अब बु संपर्क दई 9995131364 और नंबर 9090700489 ना हिंदी तो इनका जीत ने 9955131364 9090700489 ना अच्छा ना एन सुनोते ना इनका जी बन का जी बूतने जी अब जो कौन तीन पार्टी तने इनता है तो बहुत पूरे होन को जो परिवार को बागे को टई की ना पूरे को भटकाउन टई की ना को हाथुरन को जे को दिगा कट को इनकन को ना अलता टई की ना को आया बाबा गोए ना माँ गोए ना निपा इनपा रेंगे तो कोटाई की ना लेकिन ना आको मिडो इनका परिवार में ना कुआ जो ना होन को इन अकवाल करके तेर कुआ बाणे लिखा में ना कुआ स्कूल को से नौता ना को एक तो अपना परिवार लेकर
5: तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही हमारा आज का सन्मार्ग कार्यक्रम समाप्त होता है। अब रमेश दास को बिता दें नमस्कार।

0: इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जुड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
2: भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
3: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
6: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
5: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसजी कराई है।
6: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
7: एनएसबी कराने।
6: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। बड़नगर से वाराणसी के लिए निकली सेवा यात्रा का गढ़वा में भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के जनसेवा से देश सेवा को बताया अभूतपूर्व। रांची में चैन छिनतई गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक अपराधी को लगी गोली, दो अन्य गिरफ्तार। जामताड़ा से चार साइबर अपराधी पकड़ाए। वन्य जीव सप्ताह के तहत रांची में वॉकथॉन का आयोजन, लोगों ने वन्य जीवों के संरक्षण का लिया संकल्प। एशियन गेम्स में इतिहास रचने वाली बेटियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जीएससीए में भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए कल से मिलेंगे टिकट। और राज्य में कल से 9 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम समेत भाजपा नेताओं ने जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत वड़नगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा के आज छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गढ़वा जिला के गोदरमाना पहुंचने पर स्वागत तथा अभिनंदन किया। इस दौरान संवाद का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा को अभूतपूर्व बताया।
1: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका संकल्प है विकसित भारत का, ऐसे तो 140 करोड़ देशवासी लाभार्थी हैं। कोई देश का आदमी नहीं हो सकता जब लाभार्थी नहीं। जो 62 साल कांग्रेस ने राज किया, गरीबी हटी नहीं। अरे मोदी है जिसने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज गिरिडीह में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने पर बल दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 7 अक्टूबर को गिरिडीह में आयोजित जीवन ज्योति यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। मूलवासी सदान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह ही ओबीसी के लिए भी अलग कॉलम होना चाहिए।
2: यहाँ एक बहुत बड़ा आबादी है, वो मुखिया बनने से, विधायक बनने से, सांसद बनने से वंचित है, तो ये तकलीफ से यहाँ के सदान गुजर रहे हैं। और हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि ये काशी जो सीट है विधानसभा का, उसको बढ़ा के 160 कर दिया जाए और 14 सीट जो लोकसभा का है उसको बढ़ा के 28 कर दिया जाए।
0: राजधानी में लगातार चेन छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि ओरमांझी थाना क्षेत्र के चुट्टू गांव के पास आज पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया। वहीं उसके दो अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से छिनतई के जेवरात भी बरामद किए गए हैं।
3: तीन अपराधी जो पकड़े गए, इनमें से एक ने बताया कि हथियार रिकवर हम जो है सो करवा रहे हैं आपको, तो हथियार रिकवरी के लिए टीम यहाँ पे आई थी। हमारे हवलदार जो थे उनकी पिस्टल को छीनकर और दो राउंड फायर करते वो लोग जो है सो भागे। जवाब में जो है सो जो स्थानीय प्रभारी थे उन्होंने भी फायरिंग की, एक गोली उनके पैर में लगी है एक अपराधकर्मी के, और बाकी दोनों को पकड़ा गया है और हथियार को भी उसके बाद जो है सो यहाँ से रिकवर किया गया।
0: जामताड़ा जिले के करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस उपाधीक्षक अमित रविदास ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल और 10 फर्जी सिम बरामद किए गए हैं।
4: हमारी छापेमारी टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांका स्थित एक विद्यालय में छापेमारी करके एक व्यक्ति को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया। तत्पश्चात हमारे छापेमारी दल के द्वारा सीतापुर मैदान में छापेमारी करते हुए कुल 3 साइबर अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार सभी व्यक्तियों ने अपने साइबर अपराध में संलिप्तता को स्वीकार भी किया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का 10 अक्टूबर को झारखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे देवघर में आयोजित सैन्य संपर्क मेला सह निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति देवघर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @airnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में, जिसने देश में कर प्रणाली को सरल और एकीकृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
5: देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन GST का था। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में 1 दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
0: रामगढ़ जिला के व्यवसायियों का कहना है कि देश में एक समान कर प्रणाली देश के विकास में सहायक साबित हो रही है।
6: प्रारंभ में अलग अलग प्रकार के टैक्स व्यवसायियों की सुविधा के लिए, इससे व्यवसायियों को फायदा हो रहा है। कई तरह के सिस्टम में उन्हें नहीं शामिल होना पड़ता, अलग अलग लेखा जोखा नहीं जमा करना पड़ता है।
7: वन नेशन वन टैक्सेशन से जहां कर चोरी करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा, वहीं वस्तुओं की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हर एक मामले में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रख दिए हैं।
0: वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता

0: और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आज राजधानी रांची में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया और वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने कहा कि वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयास से हजारीबाग के 3 प्रखंडों पद्मा, बरही और इचाक में प्रायोगिक तौर पर ड्रोन से खेती करने की तैयारी है। जिला कृषि पदाधिकारी शुभांकर गुप्ता ने बताया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: खेतों में जो है नमी बनी हुई है और तापमान भी अचानक से बढ़ घट रहा है। इसी समय में अगर हम पौधा संरक्षण रसायनों का सही समय पे उपयोग करेंगे तो धान में जो है कीट और रोग की समस्या से बची जा सकती है। तो ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गौरियाकर्मा के सौजन्य से अभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल डिस्प्ले करके देखेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है यहाँ के स्थिति के लिए।
0: एशियाई खेलों में स्वर्णिम इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि से युवा पीढ़ी खिलाड़ियों और विशेषकर राज्य की बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में आगामी 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच की तैयारियों को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, दर्शकों के प्रवेश, यातायात व्यवस्था सहित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई ताकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। इधर T20 मैच के लिए जेएससीए में कल से टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है। जेएससीए ने बताया कि 5 और 6 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकटों की बिक्री होगी। और अब मौसम। राज्य में कल से 9 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वड़नगर से वाराणसी के लिए निकली सेवा यात्रा का गढ़वा में भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के जनसेवा से देश सेवा को बताया अभूतपूर्व। रांची में चेन छिनतई गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक अपराधी को लगी गोली, 2 अन्य गिरफ्तार। जामताड़ा से 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। वन्य जीव सप्ताह के तहत रांची में वॉकथॉन का आयोजन। लोगों ने वन्य जीवों के संरक्षण का लिया संकल्प। एशियन गेम्स में इतिहास रचने वाली बेटियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जेएससीए में भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए कल से मिलेंगे टिकट। और राज्य में कल से 9 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र।
3: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
4: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
4: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
4: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
4: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
7: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
6: RBI कहता है जानकार बनिए,
7: सतर्क रहिए।
8: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं आइए सुनते हैं जिले में आजकल
10: है। जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने दिग्घी गांव स्थित इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ ओपीडी संचालित होने और मरीजों को भर्ती करने से लेकर अन्य सारी व्यवस्था अब भी दुमका के पुराने सदर अस्पताल कैंपस से संचालित किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन हेमंत सोरेन अपने 7 साल के शासनकाल में इसे सुव्यवस्थित नहीं कर पाए। श्री मरांडी ने कहा कि
2: निराशा देख करके लगता है कि हेमंत सोरेन की पूरी पॉलिटिक्स कैरियर उनकी बाबूजी का भी आज नहीं है तो यहीं से हुआ, इसी धरती से हुआ। आज अगर वो एक हॉस्पिटल भी ठीक से 5-6-7 सालों में नहीं संचालित कर सकते तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो पद पर बने रहना ही नहीं चाहिए था।
1: दुमका के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित सभी अंतर जिला और अंतर राज्य सड़कों की बदहाली से लोग परेशान हैं। सरसावाद पंचायत के मुखिया राजू पुजहर ने कहा कि
3: महारो से दुमका तक ये ऐसी महत्वपूर्ण सड़क है जो 3 राज्यों को वो जोड़ता है। आज इस रोड में आने जाने के लिए जो है एक ही मात्र साधन है इस रोड, जो आपका जो दुमका महारो जो देख रहे हैं, गड्ढा जगह जगह पर इतना बन गया है कि ये गाड़ी चलने लायक नहीं है।
1: दुमका की पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सोरेन ने इसके लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि
4: नहीं है, ये लोग कुर्सी बचाने के लिए राजनीति करते हैं, देश और राज्य बचाने के लिए नहीं करते। ये अपना कुर्सी कैसे बचे उसके लिए ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा विकास काम ठप है, इसलिए इस क्षेत्र का जो है बदहाल है और यहाँ का जो सरकार में MLA है, यहाँ का जनप्रतिनिधि आज तक कुछ आवाज भी नहीं उठाता है।
1: जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन ने इसे हेमंत सरकार की उपेक्षा का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि
5: उनको जिताया है इसलिए गया है कि भाई बिका हर एक कोना का विकास कैसे किया जाए, लेकिन यहाँ सड़क नहीं है।
1: दुमका के कमार दुधाने स्थित तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में 2 दिवसीय 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आज संपन्न हुए। टूर्नामेंट का उद्घाटन दुमका के सांसद नलिन सोरेन और जामा की विधायक सह जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष लुईस मरांडी ने किया।
6: प्रतियोगिता यहाँ पर हो रहा है, हम अध्यक्ष हैं इस आचरित संघ के दुमका जिला के, और हमारा पूरा टीम सचिव और उनके साथ हमारा बहुत सारा पूरा टीम है, सभी जिला से हमारा पार्टिसिपेंट आए हैं और 250 प्लेयर आए हैं। अभी गेम शुरू हो गया है, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का यहाँ गेम होगा, ऐसा हम लोग का प्रयास।
1: दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि
7: यहाँ पे पहले भी मैडम का इतना योगदान रहा है स्टेडियम को बनाने में और सार्चरी सेंटर को करने में, ये सेंटर को आगे रख रखाव के अंदर बढ़िया से हम लोग इसको कैसे मेंटेन करें और आगे यहाँ कैसे बेहतर से बेहतर खिलाड़ी बने, जिला प्रशासन हमेशा इसके लिए तत्परता से लगा रहता है।
1: दुमका की सीधो कानू मर्मो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 5 नवंबर को आयोजित होगा। लोक भवन ने इस आशय की स्वीकृति विश्वविद्यालय को दे दी है। दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर स्तर पर कला विज्ञान और वाणिज्य के अलावा MBA MCA MBBS आदि पाठ्यक्रमों की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूर्ण चंद्र भाई का प्यार भरा नमस्कार।

आपके पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, आवाज है मोहम्मद रफी का। इस गीत के लिए हमें खत लिखा है वसुंधरा कॉलोनी से अंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, चेष्टा मधुर और सन्नी मधुर। इसी गीत को सुनना चाहा है माहौलडिया मेन रोड सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अन्नू तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवशीष नायक, गुलशन नायक, बिना पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नीकपाणी प्रधान। बड़ा निमडी चाईबासा से आप हैं तुलसीपति मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है सरेकेला पाड़ापुर दशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक।

इस गीत के बाद सुनते हैं रात और दिन फिल्म का ये गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। इस गीत को पसंद किया है स्टार रेडियो श्रोता संघ, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रंजल राय। इसी गीत को सुनना चाहा है शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। छोटा नंडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। तुरीटोला चाईबासा से आप हैं मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टिड्डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। बड़ा बम्बो सुपाईसाई से आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा कुमारी, प्रकाश तांती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम गिलेलोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अन्नू बनमाली, सिद कुमारी और पूजा। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिषेक, अनीश, अंश, अंशु, अमित और मुन्ना। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ग्राम पोंडाकाटा से नरसिंह महाली, सावन महाली, रोकी महाली, कविता महाली, हर्षमणि महाली, पार्वती महाली, सुहानी महाली, संजय सोरेन, संजीव महाली। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया। आप सबने सुनना चाहा है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत मुकेश के स्वर में।

सौदागर। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज और सुदर्श भोसले के स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजीव छत्रीगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि वास्तव। अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। चांडिल ग्राम हारूडी से आप हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा मनमोहिनी महतो और दीनबंधु। बड़ी बाजार चाईबासा से आप हैं मोहज़म बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी, परी, मुस्कान और नबीहा। ग्राम कुड़ा से पोंडे बॉय पाए जसमती हेमरम, कश्मीरा बॉय पाए मोनिका, बॉय पाए सुनीता, बॉय पाए प्रियांशी, बॉय पाए मीनाक्षी, बॉय पाए छोटू और प्रिशा।

0: قاتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو. اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम. और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है. हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है. रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं. मैं हूं आपका कैलाश खेर.
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना. जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना. हर संकट का समाधान है भारतीय सेना. भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं साजन फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम हड़ीरा से मानता राम सिंह कुंटिया, अमलाटोला चैबासा से आप हैं गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। डाबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल और मीनू बोकोलिया। लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनितापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शमीपुरी, बोतीपुरी, सुनीलपुरी, बीकेपुरी और आरएसपुरी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल के स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा है गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजी सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांशी शहर से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। चार डुंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। बक्सर बिहार से सरपुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमरांव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सुमन, अदीबा और दानिश अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है सारीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गोविंद्रजी पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर पांधा।

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। रात के 8 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म सफर से मन्ना डे के स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम पंजौनिया जिला जलौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चौंसौलिया आदर्श सार्थक और अलौकिक चौंसौलिया। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से मुशब खां तड़वी जरीना तड़वी मुबारक तड़वी परवेज तड़वी बिटिया रोजबीन तैमूर तड़वी भैया तड़वी रीना मुशब तड़वी रोजू बाई तड़वी सन्नी बाबू परी तड़वी एवं समस्त तड़वी परिवार। बरेडी से आप हैं हुकुम कर्मकर सुनीता कर्मकर हार्दिक कर्मकर प्राची कर्मकर और तनु कर्मकर। इसी गीत को सुनना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया खान असमा सालिया शोएब खान साइमा खान पोतरा मुश्ताबा खान पोत्री अफिया खान राव भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर और बलबीर के युगल सर में। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर। इस गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलिंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद।

रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आंदोलन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। इस गीत के लिए फरमाइशी कथा में लिखा है आदिवासी बाल कल्याण छात्रावास टाटा कॉलेज चैबासा से अलविन इक्का, सलमोहन मुंडू, विनोद कांडियांग, सुनील बोदरा, कार्तिक हेम्ब्रम, बापूजी, शंकर सोरेन, घनश्याम कोयला और सुधीर सिंह को। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सरेकेला गांव कीता से आप हैं राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, सुमित गोप, सुमित अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अनजाने फिल्म का ये गीत, सुरेश वाडेकर और साधना सरगम के युगल स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइशी खत में लिखा है दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। माहौल से चैबासा से आप हैं ज्योति तीरिया, कविता तीरिया, कृष तीरिया, हेमा जेराई, खुशी जेराई और जिया जेराई। गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी और जगदीश सोनी। टावर चौक गुमला से एसएम जावेद, शंगुप्ता अंजुम और जेनेश जोहरी। इसी गीत को सुनना चाहा है खरसावां झारखंड से शुक्रा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और भाई एस देहरी। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर रहा है श्रीमती सरिता गवाड़कर और प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक और श्वेता सुमित गवाड़कर। इसी गीत को सुनना चाहा है बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी।

चालबाज। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। बोरसरा नैला से आप हैं विनोद प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। ग्राम आमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेहांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। सन्नी इंक्लेव मोहाली से आप हैं बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा।

1942 ए लव स्टोरी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत कुमार शानू के स्वर में। इस गीत के लिए हमें खत लिखा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं। यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। इसी गीत को सुनना चाहा है फजील का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवंसी खेड़ा, शालनी खेड़ा, अरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारागांव से आप हैं सुजान वर्मा, सोहत्र वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ओल्ड लिसनर ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंकारानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग फिली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बाजीगर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की। इस गीत को सुनना चाहा है खरसवा गांव ढलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, द्वारिका, तनुजा, विभि, मनीषा, अन्नू, कविता और सिनेमाई सोए। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश आबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। लेवाई से गुलाबदास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरंगी से भागवत वर्मा।

रजनीगंधा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी की समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4थे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
5: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से

0: तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
0: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
2: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
0: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
3: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
6: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
5: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
6: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North-South Transport Corridor, even the Polar Route, the Northern Sea Route could be the subject of cooperation.
5: Second Principal Secretary to the Prime Minister Shaktikant Das has said restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He was speaking at the Kautilya Economic Enclave in New Delhi today.
7: India's financial sector has emerged as a strong pillar of economic growth, supported by reforms such as the Insolvency and Bankruptcy Code, bank recapitalization and constructive regulatory oversight. Gross non-performing assets have fallen sharply to 1.68% in June 2026, while bank profitability have improved significantly. And finally, prudent management of external sector has also supported India's efforts towards macroeconomic stability.
5: Earlier in the day, talking to the media on the sidelines,

0: 0 FIR, fast track investigations, limited adjournments, forensic evidence collection and videography, gender neutral offences have been introduced. Addressing a gathering after the implementation of new criminal laws, Prime Minister Narendra Modi said the core mantra of Bharatiya Nyaya Sanhita is citizen first.
1: Bharatiya Nyaya Sanhita ka mool mantra hai citizen first. ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं. पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है.
0: In a major legal reform, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 has introduced stringent provisions to tackle organized crime and enhance safety for women and children. Talking exclusively to Akashwani News, Sunil Kumar, advocate in Delhi High Court, said the new criminal laws introduced provisions for organized crimes, terrorism, mob lynching, and recognize digital evidences and promote electronic FIRs.
2: The three new criminal laws, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshat Niyam, replace the old IPC, CRPC and Evidence Act. Their main advantages are modernization of criminal law, faster justice, greater use of technology and stronger protection for victims.
0: Earlier, different punishments were prescribed for gang rape on a girl below the age of 16 years and 12 years. The provision has been modified and now gang rape on a woman below the age of 18 years is punishable with imprisonment of life or death. Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
3: Iran has said the Strait of Hormuz will not reopen until the United States meets 7 conditions outlined in a June interim agreement, as Tehran and Washington remain at odds over efforts to end their conflict. Iranian state media today quoted Parliament Speaker Mohammad Bakar Kalibaf as saying that Tehran's position on reopening the strategic waterway was completely clear and firm. Separately, Iranian army spokesperson Mohammad Akarminia said Iran will seek to extend the range of its missiles following its recent war with the United States. Speaking to a news agency, he said the conflict had highlighted the need for Iran to develop longer range missiles and that the country had already begun taking steps in that direction. Meanwhile, US President Donald Trump has claimed that the war with Iran will end very quickly and predicted that oil prices will fall sharply once the conflict was over. On the other hand, Yemeni forces have claimed that the Iran-backed Houthi group suffered heavy losses on key fronts in Yemen, while Saudi Arabia has rejected a Houthi claim that Aramco oil refinery in Riyadh was targeted in a missile and drone attack. According to media reports, the Yemeni armed forces of the internationally recognized government carried out 97 operations against Houthi reinforcements on the Tur al-Badha and Taiz fronts. On to sports now. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The ceremony featured the traditional parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover of ceremonial torch and flag to Doha, the host city for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour for the closing ceremony was India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda. The double gold medalist led the Indian contingent in a proud moment for the nation. India signed off from the games in fourth place in the overall medal standings behind China, Japan and South Korea. The Indian contingent returned with an impressive haul of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. It is India's second highest medal tally in Asian Games history, surpassed only by the record-breaking performance at Hangzhou in 2023. As the Asian Games draw to close today, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. In their messages, the Vice President and the Prime Minister congratulated all the medal winners and expressed hope that these games inspire even greater achievements in the years ahead and strengthen sports at the grassroots too. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over coastal and south interior Karnataka, Kerala, Mahi, Tamil Nadu and Puducherry for the next 2 to 3 days. The IMD said thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds may prevail over Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand and Tripura tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony, India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हल्के के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि अब नाई हुरमुस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वो अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ 4th मकाम पर रहा, उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी अमनो सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया, इसका एजेंडा और इसका जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा, ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का एक खातिरखा माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन के तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ है।
5: देयर इज टुडे अ सब्सटेंशियल एजेंडा फॉर इमर्जिंग एंड मिडिल पावर्स टू कोऑपरेट। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स एजेंडा इज चेंजिंग, द लैंडस्केप इज चेंजिंग, द आर्किटेक्चर इज चेंजिंग। And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
4: क्वाड को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है।
5: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India, Middle East, Europe connectivity corridor, the international north-south transport corridor, even the polar route, the northern sea route could be the subject of cooperation.
4: वजीर खारजा ने जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत AI और खला से मुतालिक सलाहियतों को ऐसे अहम शोबे करार दिया जिनमें भारत यूरोपीय यूनियन ताउन में तौसी की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तذکرہ कर रहे हैं कि फौजदारी के 3 नए قوانین के जरिए इंसाफ के हुसूल को किस तरह आसान बनाया गया। ये قوانین भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA हैं।
6: यकुम जुलाई 2024 से नाफिज होने वाले नए फौजदारी कवानीन शहरियों को बाइख्तियार बनाने की समत एक अहम कदम है। इन कवानीन का मकसद सबके लिए एक मजीद काबिल रसाई मुआविन और इंसाफ का एक मौसर निजाम तश्कील देना है। नए फौजदारी कवानीन के तहत जीरो FIR, जल्द तहकीकात, मुकदमात के इल्तवा को कम करना, फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठा करना और वीडियोग्राफी नीज ऐसे जराइम के लिए दफात मुकर्रर की गई हैं जिनके इर्तिकाब में सिंफी लिहाज न रखा गया हो। नए फौजदारी कवानीन के निफाज के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का बुनियादी मंत्र शहरी मुकदम है। उन्होंने कहा कि यह कानून शहरियों के हकूक की हिफाजत करने वाला है और इससे इंसाफ की आसान फराहमी हो सकेगी।
1: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
6: एक बड़ी कानूनी इसलाह के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में मुनज्जम जराइम से निमटने और खवातीन और बच्चों की सलामती को और पुख्ता करने के लिए सख्त दफात मुतारिफ कराई गई हैं। ऐसा पहली बार है कि मॉब लिंचिंग को दफा 103 की जैली दफा 2 के तहत एक अलग जुर्म करार दिया गया है। अगर 5 या इससे ज्यादा अफराद नस्ल, जात, बिरादरी, जिन्स, जाय पैदाइश, जबान या जाती अकीदे की बुनियाद पर किसी शख्स का कत्ल करते हैं तो हर मुजरिम को उम्र कैद या सजाए मौत के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सुनील कुमार ने आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा कि नए फौजदारी कवानीन में मुनज्जम जराइम, दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग से मुतालिक दफात शामिल की गई हैं, जबकि डिजिटल शवाहिद को भी तस्लीम किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक FIR के इंदराज की भी सहूलत रखी गई है।
2: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
6: नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
4: ज़राअत और किसानों की बहबूद नीजदेही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज 3 लाख मकानात की पहली खेप आंध्र प्रदेश के सुपुर्द की, जिन पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किए गए हैं। इसके लिए गुंटूर जिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई। जनाब चौहान ने पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 मकानात तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया।
7: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
4: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर नीजनंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नावगांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। यह असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थी, जबकि नौगांव

0: लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। अदादुशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा है कि भारत की इक्तसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनक़दा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से कुरून उस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रूपये के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में 5वीं दौर की मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातों की क्यादत में ये 5 रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान ने कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके रहन मनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान CEPA के मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मैदानियात के शोबों में 2 तरफा तालमेल में गहराई लाने से इत्तफाक किया था। अशिया के शोबे में भारत कनाडा की 2 तरफा तजारत 2024-25 के दौरान 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी, जबकि इससे मुल्क के लिए भारत की बरामदात 4.22 अरब अमरीकी डॉलर थी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़ह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिजाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी की मिजाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह आला सतही वफ्द सीनियर सरकारी अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर परमिलिन मुख्तलिफ मामलात समेत 2 तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनक़दा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाली मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाजाब्ता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एहतराज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो धांडा को हासिल हुआ। सोने के 2 तमगे जीतने वाली नीरो ने इस काबिले फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की कयादत की। भारत मजमूई तमगों की फेहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद चौथे मकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आत्माइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई तकरीब के दौरान अपने इख्तिताम को पहुंचे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।
2: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
3: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं। बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
2: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
3: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
2: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
3: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
4: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माई हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ, इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ की डेथ हो गई।
5: माई नेम इज कृष्णा मिश्र। आई यूज टू लिव विथ माई डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। Generally, I like to watch TV and like to story book.
6: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौधर से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात रात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। निवासी को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पे माहौल में डल जाते हैं, सब खुश रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पे टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वहाँ डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाना सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता।
7: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
8: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 79 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले तो मैं रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।
9: धुंधले दर्पण में गालों के अरुणाया, अपनी आँखों को दिखला के चलता रहा। उम्र की उंगलियां दस्तखत कर गई, मैं भुलावे का उबटन ही मलता रहा। कौन से रास्ते जाने किस मोड़ पर, कब बिछड़ कर मेरा पाकपन रह गया। पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, बस गए उम्र का आकलन रह गया। पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ।
3: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था, और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
3: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा, और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
10: केयर सिस्टम है ना, इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से भी जो चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिससे लॉस ऑफ पार्टनर है, इन चीजों की, तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्प्रिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
2: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता, पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं।

0: रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
1: मेरा नाम दशरथ भगत है। मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में भी हम लोगों का एक मनोरंजन होता है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
0: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
3: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं, और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जीने की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है। माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
0: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
0: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग, और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
4: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में

0: लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है। बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है। क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
0: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
2: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है। और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखे फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बाद। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न,

0: रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये, तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ। एक्चुअली हम ही इसको फेट को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
1: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
2: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
1: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
2: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
1: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनोमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
2: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहाँ के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800894416। और अच्छी बात यह है कि यह सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
1: आंकड़े जरूरी है, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
2: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
1: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
2: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
1: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
2: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
1: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
2: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाए, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ,
1: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
2: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए ऐसी हमारी कामना है।
5: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ, आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने।

0: प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंट।

सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत भक्ति गीत नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का

हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे। 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आज पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ

0: हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: मोना, 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां-6ठा स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहाँ निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
1: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
0: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीत कर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
1: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके पांचवा स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि

0: लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मुना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है
1: जी। और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा, 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है, खासतौर पर अगर हम बात करें क्रिकेट की तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं और एशियाई स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके, उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहां तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहां जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आए लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाए। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गज़लों का कार्यक्रम महफिल।

इस गज़ल के साथ ही महफिल का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

प्यार किए जा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वरों में।

0: मेल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सुरों के रंग कार्यक्रम में श्रोता आइए अब सुनते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गीत उषा मंगेशकर और आशा भोसले के स्वरों में।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम शुरू के रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda

रात के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अभी यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।